आकाशवाणी इम्फाल हौजी का मुलाबीरसी बोकुल मखों इमो शर्मा देगी मतमी सेमा सैसक पना सुन सकली इंगेन की नोंहों नाइन सेवी सेगी सेरेंग पर हिजम विजय सिंह।

0: पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत करेंगे। व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति मिलने की उम्मीद। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में प्रदर्शनकारियों का पाकिस्तान को 48 घंटे का अल्टीमेटम। मांगे पूरी नहीं होने पर 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की दी चेतावनी। भारत ने अंडर 20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 4 स्वर्ण सहित कुल 20 पदक जीते। और फुटबॉल में स्पेन और बेल्जियम फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। वार्ता के दौरान द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की जाएगी। दोनों नेता आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से समझौता ज्ञापनों के आदान प्रदान भी करेंगे।
3: प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 10:30 बजे औपचारिक

0: एक स्वागत समारोह से होगी। इसके बाद अतिथि पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के संसद परिसर में भी कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां वे दोनों देशों के बीच संसदीय सहयोग के महत्व का उल्लेख करेंगे। वे एक सामुदायिक कार्यक्रम में भी भाग लेंगे, जहां श्री मोदी प्रवासी भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ भारत इंडोनेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति करने के लिए चर्चा करने के लिए उत्सुक हैं। इस साझेदारी की स्थापना उनकी 2018 की यात्रा के दौरान हुई थी। संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री की यात्रा से रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई समझौतों का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में श्री चक्रवर्ती ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूती मिलेगी।
2: India and Indonesia are very close and strategic partners.
3: भारत और इंडोनेशिया बेहद करीबी और रणनीतिक साझेदार हैं। निकोबार द्वीप समूह में स्थित भारत का सबसे दक्षिणी छोर इंडोनेशिया के आचे से मात्र 160 किलोमीटर दूर है। गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो की बेहद सफल यात्रा के बाद हमारे संबंध और भी मजबूत हो रहे हैं और प्रधानमंत्री की यात्रा इसे और भी मजबूती देगी।
2: प्राइम मिनिस्टर्स विजिट विल रीइंफोर्स दैट ट्रेंड।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर चार खाड़ी देशों की अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे। विदेश मंत्री ने शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाएं दी। डॉक्टर जयशंकर ने बहरीन में प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। डॉक्टर जयशंकर कुवैत और ओमान भी जाएंगे। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में सहकारिता क्षेत्र से जुड़े लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया है। नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2021 में स्थापित इस मंत्रालय ने सहकारिता तंत्र को आधुनिक, पारदर्शी, प्रौद्योगिकी आधारित और प्रतिस्पर्धी बनाया है। श्री शाह ने कहा कि सहकारिता विभाग ने प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
4: हमने कृषि ऋण, डेयरी, उर्वरक वितरण और ग्रामीण सेवाएं, ये सभी को प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का काम किया है। सेकेंडरी और टर्सरी क्षेत्रों में भी उसको जोड़ने का काम किया है। भंडारण, उत्पादन, एक्सपोर्ट, जैविक उत्पादन, परंपरागत बीजों का उत्पादन, ज्यादा उत्पादन देने वाले बीजों का निर्माण, डिजिटल सेवाएं, बैंकिंग, मोबिलिटी, लॉजिस्टिक और हरित ऊर्जा, ये सबको एक माला में पिरोने का काम ये 5 साल में किया है।
1: मंत्रालय की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री शाह ने कहा कि 30 क्षेत्रों में फैली 85 लाख से अधिक सहकारी समितियों और 32 करोड़ सदस्यों को सम्मिलित करने वाला एक एकीकृत डिजिटल डेटाबेस बनाया गया है। सहकारिता मंत्री ने कहा कि सरकार ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों पैक्स की भूमिका का विस्तार किया है। इससे वे साझा सेवा केंद्रों के माध्यम से 300 से अधिक सेवाएं प्रदान कर सकेंगे।
4: आज पूरे देश के पैक्स एक ही बायलॉज के तहत काम कर रहे हैं। मॉडल बायलॉज को स्वीकार कर लिया, 300 गतिविधियों को 55,000 पैक्स के माध्यम से हम CSC की सेवाएं दे रहे हैं। 39,000 पैक्स किसान समृद्धि केंद्र बन चुके हैं। 700 पैक्स जन औषधि केंद्र बन चुके हैं। 75 पैक्स ने पेट्रोल और डीजल का खुदरा आउटलेट किया है और 300 पैक्स गैस के वितरण में लग गए हैं और लगभग 150 पैक्स जल आपूर्ति योजना का मेंटेनेंस का भी काम कर रहे हैं।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
5: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर पीओके में बढ़ती राजनीतिक उथल पुथल के बीच जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। कमेटी ने एक औपचारिक घोषणा में कहा कि उनका मौजूदा धरना प्रदर्शन तब तक अनिश्चितकाल तक जारी रहेगा जब तक कि उनकी सभी मांगें पूरी नहीं की जाती। कमेटी ने पीओके के निवासियों और कश्मीरी प्रवासी समुदाय के सदस्यों से 9 जुलाई को होने वाले विरोध प्रदर्शन में भाग लेने का आह्वान किया है। भारतीय नौसेना शनिवार को विशाखापट्टनम में अपने 6वें स्वदेशी प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट महेंद्रगिरी F-38 का जलावतरण करेगी। एक रिपोर्ट।
2: रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस स्टील्थ फ्रिगेट को भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा आंतरिक रूप से डिजाइन किया गया है। इस जहाज का नाम पूर्वी घाट की भव्य महेंद्रगिरी पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया है। मंत्रालय ने कहा कि यह जहाज लचीलेपन, शक्ति और अटूट संकल्प का प्रतीक है। महेंद्रगिरी जहाज अब एक विशिष्ट विरासत बनने और भारत के समुद्री इतिहास में एक और गौरवशाली अध्याय जोड़ने के लिए तैयार है। यह जहाज आधुनिक संयुक्त डीजल या गैस प्रणोदन प्रणाली से संचालित है। यह इसे समुद्री अभियानों के पूरे स्पेक्ट्रम में असाधारण मजबूती के साथ उच्च गति संचालन करने में सक्षम बनाता है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: जनजातीय कार्य मंत्रालय आज से ओडिशा के भुवनेश्वर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सुदृढ़ बनाने पर 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: इस कार्यशाला में लगभग 200 प्रतिभागी भाग लेंगे। इस अवसर पर जनजातीय कार्य मंत्रालय और वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान ट्राइब एक्स नामक एक डिजिटल शिक्षण मंच का भी शुभारंभ किया जाएगा। यह मंच जनजातीय कला, संस्कृति, भाषाओं और पारंपरिक ज्ञान और कौशल विकास को समर्पित होगा। कार्यशाला का उद्देश्य देश भर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों के कामकाज की समीक्षा करना और उन्हें जीवंत ज्ञान संस्थानों, सांस्कृतिक संसाधन केंद्रों और जनजातीय विकास के लिए नीतिगत सहायता केंद्रों में परिवर्तित करने के लिए एक व्यापक कार्यसूची विकसित करना है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
1: जम्मू कश्मीर सरकार ने जानलेवा बीमारियों से जूझ रहे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को राहत देने के लिए निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि CDF योजना के दिशा निर्देशों में संशोधन किया है। नई व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक विधायक अपने CDF से 20 लाख रुपए तक की राशि उपलब्ध करा सकेगा। ये सहायता गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों और अन्य अधिसूचित आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मरीजों को दी जाएंगी। और अब खेल खबरें। थाईलैंड के पटाया में आयोजित अंडर-20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण, 7 रजत और 9 कांस्य पदकों सहित कुल 20 पदक जीते हैं। महिला वर्ग में भारत 184 अंक के साथ उपविजेता रहा, जबकि पुरुष फ्रीस्टाइल वर्ग में भारतीय टीम 152 अंक के साथ तीसरे स्थान पर रही। क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला का तीसरा मुकाबला आज रात नॉटिंघम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 10 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम श्रृंखला में पहली जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेगी। और बात फीफा फुटबॉल विश्व कप की। फुटबॉल में बेल्जियम ने सिएटल में चल रहे फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में अमेरिका को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। बेल्जियम अब शुक्रवार को लॉस एंजल्स स्टेडियम में क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना करेगा। इससे पहले स्पेन ने कल रात डलास स्टेडियम में राउंड ऑफ 16 मुकाबले में पुर्तगाल को 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई थी। अटलांटा में आज रात राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मैच में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में भी मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, ओडिशा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी अगले तीन से चार दिनों तक ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
4: धन्यवाद विशाल। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में ट्रस्ट के महासचिव और सदस्य के इस्तीफे आज के सभी अखबारों की पहली बड़ी खबर है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, चंपत राय और अनिल मिश्र को कामकाज से विश्राम, इस्तीफे मंजूर। दैनिक भास्कर के शब्द हैं, राम ट्रस्ट कृष्ण भरोसे, पूर्व IFS अधिकारी कृष्ण मोहन बनाए गए अंतरिम महासचिव। दैनिक जागरण ने SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्र दोषी, चंपत राय का नाम गायब। घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालेंगे, भ्रष्टाचारियों से वसूलेंगे पाई पाई, गृहमंत्री अमित शाह का ये बयान अमर उजाला में है। कोलकाता में एक कार्यक्रम में गृहमंत्री ने कहा, घुसपैठियों की पहचान कर वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पहलगाम आतंकी हमले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने हाफिज सईद को बनाया आरोपी। देशबंधु के अनुसार पूरक आरोप पत्र में पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्करे तैयबा के सरगना पर भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने और आतंकी साजिश रचने का आरोप। नीट PG परीक्षा के पैटर्न में फेरबदल की खबर हिंदुस्तान में है। 30 अगस्त को कंप्यूटर बेस्ड मोड में आयोजित होगी परीक्षा, अब 200 की जगह 180 सवाल पूछे जाएंगे। बार बार यातायात नियमों के उल्लंघन पर निलंबित होगा ड्राइविंग लाइसेंस। दैनिक जागरण के अनुसार बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए सड़क परिवहन मंत्रालय की मोटर वाहन कानून में बदलाव की तैयारी।
1: धन्यवाद सरफिरोजी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत करेंगे। व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति मिलने की उम्मीद। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में प्रदर्शनकारियों का पाकिस्तान को 48 घंटे का अल्टीमेटम। और फुटबॉल में स्पेन और बेल्जियम फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am VC Pramod, the headlines. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta today to provide fresh momentum to comprehensive strategic partnership between the two countries. Home and Cooperation Minister Amit Shah says Cooperation Ministry infused new energy into lives of nearly 30 crore people over the past 5 years. Pakistan-occupied Kashmir protesters issue 48-hour ultimatum to Islamabad. Warn of grand and final action on July 9th if demands are not met. India secure 20 medals including 4 gold at under 20 Asian Wrestling Championships in Pattaya. And Spain book place in FIFA World Cup quarterfinals with a dramatic 1-0 victory over Portugal. Belgium beat US 4-1 to enter the quarterfinals. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta today. Mr. Modi arrived in Jakarta yesterday on a 3-day state visit at the invitation of Indonesian President. In a special gesture, President Prabowo personally received the Prime Minister at the airport. Indonesian Air Force fighter jets escorted the Prime Minister's aircraft after it entered Indonesian airspace. More from our correspondent.
6: Describing the welcome as deeply touching, Prime Minister Modi said he looked forward to holding discussion with President Prabowo to impart fresh momentum to the India-Indonesia Comprehensive Strategic Partnership, which was established during his 2018 visit. Prime Minister Modi praised the rich cultural performances presented during his arrival in Jakarta, saying they reflected the deep civilizational, cultural and spiritual ties shared by India and Indonesia. The Prime Minister also appreciated a Bharatanatyam performance by Samana Vaya group comprising Indonesian students. The Prime Minister witnessed a series of performances. These include Indonesia's iconic Wayang Kulit shadow puppetry depicting the Ramayana, a Bharatanatyam recital by Indonesian students, and a devotional Buddhist dance paying homage to the triple gem, Sri Ratna. Expressing gratitude to the Indian community, the Prime Minister said he was touched by the warm reception accorded to him in Jakarta. Prime Minister Modi received an enthusiastic welcome from the Indian diaspora upon his arrival at the hotel in Jakarta. India's ambassador to Indonesia, Sandeep Chakraborty, said major announcements expected across defense, maritime security, digital connectivity, critical minerals and trade sectors.
7: We will be doing a lot of understandings and agreements on several areas of cooperation. There will be cooperation announcements or agreements in five sectors. One would, of course, be defense and maritime security, then trade and investment, food security and fertilizer security, energy security, critical minerals, and of course, educational and health sectors.
6: Indonesia is the first stop of Prime Minister Modi's three-nation tour, which will also include visit to Australia and New Zealand later this week. Sandeep Bandashgupta, Akashvani News, Jakarta.
5: Union Home and Cooperation Minister Amit Shah has said that Cooperation Ministry has infused new energy into the lives of nearly 30 crore people associated with the cooperative sector over the past 5 years. Addressing the 5th Foundation Day celebrations of the Cooperation Ministry in New Delhi, Mr. Shah said the ministry, established by Prime Minister Modi in 2021, has transformed the cooperative ecosystem into one that is modern, transparent, technology-driven and competitive.
8: सहकारिता से जुड़े हुए देश के 30 करोड़ लोग
9: For 30 crore people associated with the cooperative sector and more than 8.5 lakh cooperatives across the country, this is a day they had been waiting for over the past 75 years. Prime Minister Narendra Modi decided to establish an independent Ministry of Cooperation in the Government of India. This decision by the Prime Minister has served to elevate the country's cooperative movement to a new stage.
8: सहकारिता आंदोलन को नए स्टेज पर ले जाने का काम
5: He said the ministry has identified the key challenges facing the cooperative sector, prepared a comprehensive roadmap for its development and resolution, and introduced reforms that have modernized the entire ecosystem. He added that when the nation celebrates the centenary of its independence in 2047, the cooperative movement will serve as the strong foundation of a prosperous India. Recalling the creation of the ministry on July 6, 2021, Amit Shah said the decision ended a 75-year wait for millions of people associated with the cooperative sector. The Sri Ram Janmabhoomi Tirtha Kshetra Trust has accepted the resignations of General Secretary Champat Rai and Trust Member Dr. Anil Mishra. Both had stepped down after their names surfaced in the alleged Ram Temple donation embezzlement case. Krishna Mohan has been appointed Interim General Secretary until a new appointment is made. His complaint formed the basis of the FIR registered in the alleged donation irregularities case, in which 8 people have been arrested. The trust has also decided to appoint a chief executive officer and has formed a 3-member committee to recommend candidates. Addressing the media, trust treasurer Govind Dev Giri said the possibility of a conspiracy behind the episode could not be ruled out. He also asserted that all donated ornaments and valuables are safe, properly accounted for, and that details of donated items are available with the trust. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle @AIRNewsAlerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app.
10: Amid the political storm intensifying in Pakistan-occupied Kashmir POK, the Jammu-Kashmir Joint Awami Action Committee, JAAC, has issued a 48-hour deadline to the government in Islamabad, threatening a grand and final response on the 9th of July if the conditions remain unfulfilled. In a formal declaration, the committee announced that its current sit-in protest will persist indefinitely until all of its demands are satisfied. More from our correspondent.
11: The committee has called upon residents throughout POK and the members of the Kashmiri diaspora to participate in the protest scheduled for July 9. Police brutality by Pakistani forces has intensified on Sunday against the people protesting against the severe crackdown by Islamabad and the sweeping arrest of more than 600 civil rights activists in Pakistan-occupied Kashmir, with reports of shelling, firing and clashes emerging from several parts of Muzaffarabad. Thousands of people took to the streets on demanding an end to the blockade, restoration of communication services, uninterrupted supplies of food and medicines, the release of detained leaders and implementation of a 38-point written agreement. The demonstrations have intensified since Pakistan banned the JAAC under the Anti-Terrorism Act. Protest organizers allege that more than 600 workers and political leaders have been arrested, while authorities have imposed an economic blockade by restricting the supply of food, flour and essential medicines. Yashasvi Kiryal for Akashvani News, Delhi.
10: External Affairs Minister S. Jaishankar met with King Hamad bin Isa Al Khalifa in Bahrain and discussed ways to further strengthen bilateral partnership. Dr. Jaishankar arrived in Bahrain from Qatar on the second leg of his four-nation visit to the Gulf, which also includes Kuwait and Oman, from July 5th to July 10th. The minister conveyed the greetings of President Draupadi Murmu and Prime Minister Narendra Modi to the King and thanked him for ensuring the safety and well-being of the Indian diaspora in Bahrain. Dr. Jaishankar also interacted with the members of the Indian community in Bahrain. During the ongoing visit, Dr. Jaishankar has been meeting his counterparts and top leaders of the Gulf countries to enhance bilateral relations and exchange views on regional developments and issues of mutual interest. Heavy rains continue in the coastal part and the Ghat areas of Maharashtra, with a red alert being sounded for Palghar, Raigad and Ghat areas of Nasik and Pune for today. Coastal districts, including Mumbai and North Maharashtra districts, have been given orange alert with the possibility of moderate to heavy rains in certain areas. Authorities have taken precautions to ensure the safety of citizens, with NDRF and SDRF teams on high alert in sensitive areas. A report.
12: The Ghat areas of Maharashtra have seen intense rainfall, with Lonavala recording more than 600 mm of rain. Many tourist places have been closed. In Nashik district, authorities have sounded maximum alert following forecast of cloudburst like rainfall. Following the alert, schools and colleges in Mumbai, Thane, Navi Mumbai, Palghar, Raigad, Ratnagiri district and sensitive ghats of Nashik, Satara, Pune will remain closed today. Mumbai-Pune expressway has been partially opened for traffic after being disrupted following a landslide. With reports of Sangeeta Godbole, this is Sanyukta Yadav, Akashwani News, Delhi.
10: Indian wrestlers finished with an impressive haul of 20 medals, including 4 gold, 7 silver and 9 bronze at the Under-20 Asian Wrestling Championships in Pattaya, Thailand. India ensured consistent podium finishes across multiple weight divisions throughout the championship, securing top 3 overall team rankings in both women's wrestling and men's freestyle. In women's wrestling, India finished second on the podium with 184 points, falling just short of champions China with points, while outclassing third place Japan with 142 points. The Indian men's freestyle team finished third overall in the team standing with 152 points, behind winners Kazakhstan with 170 points and runners-up Iran with 164 points. Leading the Indian charge in the women's division were Parveen in 50 kg, Muskan in 53 kg and Kajal in 76 kg, who all clinched gold medals in their respective weight classes. In the men's freestyle, Sumit Kumar, Lakshman Bharaskar captured the solitary gold medal for India in the 70 kg category, prevailing 13-7 in a high-scoring thriller against Kazakhstan's Sunkar Sedakmet. In football, Spain stormed into the quarterfinals of the FIFA World Cup, beating Portugal 1-0 in the round of 16 at the Dallas Stadium last night. Mikel Merino scored in the first minute of second half stoppage time to secure the victory. Meanwhile, Portugal superstar Cristiano Ronaldo has announced he won't be returning for the next FIFA World Cup following his nation's round of 16 exit. Spain advanced to the quarterfinals for the first time since winning its only World Cup title in 2010 in South Africa. Belgium defeated United States 4-1 in the round of 16 clash to secure their place in the quarterfinals. Two early goals from Charles de Ketelaere and a third from Hans Wanneken gave Belgium a strong lead. Romelu Lukaku added the final goal in the last seconds. On the other hand, Malik Tillman scored the lone goal for the US in the first half. Belgium will now face Spain in the quarterfinals at the Los Angeles Stadium on Friday. In men's cricket, India will take on host England in the third T20 international of the five-match series at Trent Bridge in Nottingham tonight. The match is scheduled to begin at 10 p.m. Indian time. The men in blue will look to level the series as the new skipper Shreyas Iyer is yet to register first win under his captaincy. England, on the other hand, have named an unchanging playing 11 for the third T20 international. Earlier, host England defeated India by 4 wickets in the second T20 international on Saturday in Manchester. Opting to bat, India scored 190 for 7 in the stipulated 20 overs. And now, for a look at today's newspapers, it's over to Sarabjit Kaur.
13: Thank you, Pramod. Temple graft to sin. Trust Chair Rai and Mishra exit is the lead in the Times of India, while the Hindustan Times headlines, Ram Temple Trust sets big overhaul in motion. The Statesman headlines, PM Modi in Indonesia to strengthen linkage with Indo-Pacific partners. His visit to Indonesia as part of his three-nation tour is widely covered on the front pages of all newspapers, with pictures of the Indonesian president specially receiving the Indian PM as a special gesture. The story of the National Investigating Agency chargesheeting LET chief Hafiz Saeed is widely covered on the front pages of all newspapers. The Pioneer headlines, NIA charges Hafiz Saeed for Pahalgam terror attack. The torrential rains in Maharashtra have been covered with pictures of the landslide blocking the Pune-Mumbai missing link, even as the Times of India headlines Pune-Mumbai link cut off for hours as heavy rains hit roads, rail and flights. And finally, a story in The Hindu says that a question in the BSc statistics exam at Kerala University had its answer printed alongside it. While the university sought a report, those part of the preparation called it a silly mistake. And with that, it's back to you, Pramod.
10: Thank you, Sarab. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta today to provide fresh momentum to comprehensive strategic partnership between the two countries. Home and Cooperation Minister Amit Shah says Cooperation Ministry infused new energy into lives of nearly 30 crore people over the past 5 years. Pakistan-occupied Kashmir protesters issue 48-hour ultimatum to Islamabad, warn of grand and final action on July 9th if demands are not met. India secured 20 medals including 4 gold at Under-20 Asian Wrestling Championships in Pattaya. And Spain booked place in FIFA World Cup quarterfinals with a dramatic 1-0 victory over Portugal. Belgium beat US 4-1 to enter the quarterfinals. And with that we end the morning news. Have a nice day.
14: पेश है खबरनामा।

आकाशवाणी इम्फाल अदोन ताबिरिबसे कंगला चैनल के थौरम परेंगने आकाशवाणी इम्फाल हौजिक लौबिरसि तोंगान तोंगानबा मणिपुरी फिल्म से ngakpiganी मणिपुरी मतम से सिंग मथंग मथंग ओइना कुदोल गहन बदल लखचरीबा मदमी सयसे निंगोंबम रूपचंद्र के कोंजेलदा राजेंद्र ओकमन सेरिंगबा मदमी सैनी कुदोल दमसरी मयंपुना तामिनसे

0: ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯕ
1: ꯎꯝ
0: ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯄꯨꯁꯤꯟꯕꯗ ꯌꯥꯗꯕ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯗ ꯆꯦꯛ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯕ
1: ꯑꯁ ꯃꯤꯅ ꯁꯥꯎꯗꯅꯅꯦ ꯂꯨꯍꯣꯡꯕ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯥꯛꯇ ꯇꯣꯛꯀꯅꯤꯀꯣ
0: ꯍꯩ ꯁꯥꯎꯒꯦ ꯁꯥꯎꯁꯅꯨ ꯂꯥꯛꯇꯁꯅꯨ
1: ꯐꯥꯖꯟꯗꯅ ꯊꯝꯃꯣ ꯂꯨꯍꯣꯡꯕ ꯃꯤꯀꯨꯞꯇ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯅꯤ ꯁꯤꯗꯕꯨ ꯀꯩꯗꯧꯗꯣꯏꯅꯣ
0: ꯅꯪꯁꯤꯗꯤ ꯇꯝꯕ ꯉꯝꯂꯅꯤ ꯉꯥꯏꯈꯣꯅꯦ ꯅꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯧꯕ ꯑꯅꯤꯗꯨꯒ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯈꯔꯒ ꯂꯨꯍꯣꯡꯗ꯭ꯔꯤꯐꯥꯎꯁꯤꯗꯤ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯁꯤꯟꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏꯗ꯭ꯔ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ
1: ꯑꯗꯨꯒꯤꯕꯨꯗꯤ ꯌꯥꯅꯤꯗ
0: ꯀꯅꯥꯅ ꯈꯪꯅꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯗꯨꯅ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯔꯤ ꯃꯉꯥ ꯍꯦꯛ ꯄꯨꯔꯛꯇꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯕꯗꯤ
1: ꯑꯗꯨ ꯍꯦꯛ ꯌꯥꯄꯣꯠꯇꯦꯗ ꯆꯦꯛꯄꯟ ꯈꯥꯗꯅ ꯒꯦꯠ ꯂꯣꯟꯗꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕꯨ
0: ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯝꯐꯨ ꯍꯥꯞꯄꯨꯗ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯕꯅ ꯑꯃꯅꯤꯗꯦ ꯈꯔ ꯉꯥꯡꯉꯣ ꯋꯥꯈꯟ ꯇꯥꯜꯂꯨꯅꯦ ꯂꯨꯍꯣꯡꯉꯤꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯅꯕꯅꯤ ꯈꯪꯍꯜꯂꯨꯅꯦ
1: ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ ꯕꯤꯃꯥ ꯆꯥꯗꯨ ꯏꯪꯈ꯭ꯔꯅꯤ ꯊꯛꯆꯜꯂꯣ
2: ꯏꯃꯥ ꯑꯩꯗꯤ ꯏꯪꯉꯒ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯛꯏ ꯊꯅꯦꯜ ꯅꯪ ꯃꯁꯤ ꯂꯩꯕꯤ ꯍꯣꯏꯒꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨꯗꯣ ꯕꯥꯇꯣꯟ ꯑꯝꯇ ꯇꯧꯗ꯭ꯔ ꯃꯥꯜꯂꯤꯅꯦ
3: ꯑꯩ ꯌꯥꯔꯤꯕ ꯃꯈꯩ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯦ ꯆꯥ ꯄꯥꯏꯌꯣ
2: ꯑꯁ ꯏꯁꯤ ꯀꯔꯝꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯅꯣ ꯈꯪꯗꯦꯃꯤ ꯈꯨꯠꯁꯤꯗ ꯍꯦꯛ
1: ꯕꯤꯃꯥ ꯌꯥꯅꯤ ꯌꯥꯅꯤ ꯁꯣꯏꯕꯥꯏꯗꯨꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩ ꯅꯞꯊꯣꯛꯀꯦꯁꯦ ꯌꯥꯅꯤ ꯌꯥꯅꯤ ꯌꯥꯅꯤ
2: ꯏꯃꯥ ꯐꯤ ꯑꯃꯇ ꯄꯤꯕꯤꯌꯣ ꯑꯩ ꯅꯞꯊꯣꯛꯀꯦ
1: ꯌꯥꯅꯤ ꯕꯤꯃꯥ ꯑꯩ ꯅꯞꯊꯣꯛꯀꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯅ ꯄꯥꯏꯔꯝꯕ ꯐꯤꯗꯨꯕꯨ ꯀꯗꯥꯏ ꯂꯩꯔꯤ
2: ꯃꯥꯅ ꯄꯤꯔꯛꯄꯅꯤ ꯏꯃꯥ ꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯏꯀꯥꯏꯖꯔꯦ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩ ꯌꯧꯖꯈ꯭ꯔꯒꯦ
4: ꯑꯩ ꯂꯩꯍꯧꯔꯦ
1: ꯆꯠꯂꯣ ꯆꯠꯂꯣ
4: ꯊꯤꯟꯗꯣꯔꯣꯏ ꯑꯩꯅ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯖꯦꯟꯗꯅꯦ
3: ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯊꯤ ꯀꯔꯤꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ
5: ꯊꯅꯤꯜ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅꯅ ꯁꯛ ꯈꯪꯅꯗ꯭ꯔꯕꯁꯨ ꯃꯔꯝ ꯑꯃꯒꯤ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯋꯥꯍꯩ ꯑꯃ ꯑꯅꯤ ꯉꯥꯡꯅꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯐꯥꯎ ꯆꯠꯂꯒꯦ ꯂꯩꯍꯧꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯅꯪ ꯑꯩꯗꯤ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅ ꯂꯣꯏꯅꯈꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯪꯒꯤꯗꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯂꯨꯕ ꯃꯥꯌꯣꯟ ꯑꯃ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯃꯗ ꯆꯠꯈꯤꯒꯗꯕ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯇꯨꯃꯤꯟ ꯂꯩꯍꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯆꯨꯝꯗꯕꯔ ꯈꯟꯕꯗꯒꯤ ꯆꯤꯊꯤꯁꯤ ꯃꯇꯪ ꯏꯈꯤꯕꯅꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯅꯪꯅ ꯇꯥꯃꯣ ꯆꯠꯂꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯩꯅꯁꯨ ꯆꯠꯂꯣ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯌꯨ ꯌꯥꯏꯐꯕꯤꯗ ꯑꯣꯏꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅꯅꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯇꯟꯖꯥ ꯑꯗꯨꯃꯗꯤ ꯐꯪꯅꯗ꯭ꯔꯦ ꯊꯅꯤꯜ ꯀꯔꯤꯗꯤ ꯏꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯕꯅꯤ ꯅꯪ ꯑꯩꯅ ꯈꯨꯗꯨꯝ ꯆꯟꯕ ꯉꯝꯂꯔꯣꯏꯗꯕ ꯂꯥꯏꯕꯛꯀꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯁꯥꯐꯨ ꯊꯧꯅꯁꯤꯟ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯅꯪꯒꯤ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯕ ꯁꯤꯟꯕꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯄꯄꯥ ꯏꯃꯥꯒꯤ ꯍꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯩ ꯑꯩ ꯈꯪꯉꯦ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯅꯪꯅ ꯋꯥꯖꯔꯕꯁꯨ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯌꯥꯏꯐꯅ ꯋꯥꯠꯇ ꯄꯥꯗꯅ ꯍꯤꯡꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯁꯥꯟꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯗꯤ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯃꯇꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯍꯤꯡꯅꯔꯤꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯃꯍꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒ ꯆꯨꯁꯤꯟꯅꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯌꯝꯕ ꯃꯤ ꯑꯃꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯅꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯑꯁꯦ ꯑꯣꯏꯅꯅꯕ ꯇꯥꯅꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯅꯣꯡꯃ ꯅꯪꯕꯨ ꯎꯔꯨꯕ ꯅꯪꯒꯤ ꯐꯖꯕꯗ ꯃꯤꯀꯨꯞꯇꯨꯃꯛꯇꯗ ꯉꯥꯎꯈꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯊꯃꯣꯏꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯥꯟꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯑꯃꯅ ꯅꯪꯒꯤ ꯁꯛꯐꯝ ꯎꯔꯨꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯅꯪꯒꯤ ꯃꯔꯝ ꯈꯪꯂꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯅꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯝꯕꯥꯜꯗꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧꯀꯣꯜꯒꯨꯝꯕꯅꯤ ꯄꯄꯥ ꯃꯃꯥ ꯋꯥꯔꯛ ꯆꯦꯠꯄꯅꯤ ꯑꯩꯒꯨꯝꯕꯒꯤꯗꯤ ꯋꯥꯆꯦꯠ ꯃꯩꯇꯥꯟꯒꯨꯝꯕꯅꯤ ꯈꯟꯊꯍꯧꯗꯕ ꯑꯁꯤꯃꯁꯨꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯁꯤꯃꯁꯨ ꯑꯩ ꯌꯥꯏ ꯅꯪꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯈꯣꯡꯂꯣꯏ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕ ꯃꯍꯥꯛꯇꯤ ꯁꯅꯥꯅꯤ ꯑꯃꯨꯛꯁꯨ ꯍꯥꯏꯒꯦ ꯃꯍꯥꯛꯀ ꯆꯥꯡꯗꯝꯅꯔꯨꯔꯕꯗꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯃꯩꯇꯥꯟꯗ वाचेत मैदाने फरे मसिन मसी होइरे हौकिबो पुंब काउ थोकतुना नुंगाइन पाननबा सिंगनदन चतको थानिल हाइनबदाइने निंबकाइबा हाइबसिना अवाबगी सैरें इननबगी हौरक फमने हाइना येंगो ऐसु सैरें अम फोगे
2: सैरें
5: मसिना ऐगी थमोइदगी नंगी थमोइदुद तमजबा हाइबतुने
2: कदा सैरें कदाय
5: ऐगी पुकनिंग इपाकतगी नंग नलेशिल ओइन पाई ख्रबसु करीगुंब मतं अमदा खिक्पीर ओ नोंलिक अमतं एगी कंग लबा सरम असिदा अमुकसो करीगुंब मतं दा लाक लबा नहाकना थीर उने एबु नाकेन थागी उना लगता नत्रगा नैतों ताबस्यक्लाना हिक न हिक न तेंग थारी बा अकंग उपाल दुगी मखोंग दा नंग न सट ख्रबदा लिशिंग कया थोक न मदों काई ख्रबा आईगी नुंगाई बा ताइबंग पार आई तन खंग जे कया मुआरी बा आईशे अनिल नुशिद्रा एखोय निन चतुबा सिंथ्राव सौहै हौब मफमद एन नुशिकी असंग ब फिरांग जी मानब नापी थक्त चोई ताब लैरांग सिंगत नो मना कैसु लैत ब वाफम सिदा नो मिनकिब निंगसिंग इब्रा
2: करी
5: निनोइन पंजरबदा एनसान कांगहो नमितुगी है कोई नी बुनिंग सिंबो ओइना अरोइबो ओइना ईके को ताईबंग पंपाक सिदा बुनसीगी ख्वाई तगी चाऊब कुम्हे लुहोंबा लुहोंबा की कुम्हे सिदा नुपागी सत्तम लांगबी गदबा मिंगोइन पंजरबदा इरोम सनजाऊबा अदुगा नुपीगी सक्तम लांबी गदबी मिंगोइन पंजरबदा थानिल लैमा अनीबु थागच्चरे थमुई सेंग याइफबी याइफब ओयो हाइजरे कुंशिकी कुंठां कुदिंग माय पाकपियो नाके मतम ममगी लमखांगी कुंबुरोई नशिकी नलमलानबा योये
2: दामा दामा योये
1: कैसे रखें है कैसे रखें है हाँ कैसे रखें बा कैसे रखें है सिटी कनान बियों बिचिती नो हाँ हाउसिंग तक तो गायरा मिलते नो ओयरी नी ने इन भदी लोग ये चरक दो ओयरी ने बा मधु कनानो है अधु कनानो लुहों वाला हम बस चुकिया यारों को इन हाइशरी मधु लाहम बस चुकिया यारों
2: इमा नमन हाइड्रो बस लुहों बदी इमा ने बिक नाम तला ओये
1: कया दुनिया
2: नमित तो एकी नो आये बनो मित ओयर ओये
1: कया दुनिया ये
2: मैंने नुआ याय पर बस ना तो मिकल लिदो आई ये जैसी ले पाके तो गाल ओएगे नहीं
1: मशीन ऐसा हो क्या मैं आनी सिबु करी की नमी है कराई तो पीरो चिती दो कराई न पीरो है नहीं ची मशीन सिखाई मशीन सिखाई

आकाशवाणी इम्फाल हौजिक नुमित जुंबा पुंग तरा निथोय तारे नसिगे कंगला चैनल की अनिसुब थौरम परेंग संदुकपा हौजरी संदुकजरी मीडियम वेब मीटर सहुम नेफु दशमिक अमा किलोहर्ट्स चानिपाल मरीफु निथोय हौजिक मणिपुरी नुमित जुंबा की पाव ताबिरसी।

0: आकाशवाणी इम्फाल नलिनी देवी पाउ पजरी अहनबाट मरुइब पाउ गृहमंत्री श्री गोविंद दास कौठौजम हरी सान खोटना नहाजिंग पुनछिनब कांगलू फुरुप की खेनब थमदी चाब पुरप अचौब लौरी केंद्र की गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय नागालैंड की मकोकचुंग जिला चतना चाकु थौर की थब थौरमचिंगे ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट की मपांगल कनखटनब पांदम निमितनी चटगदब जाति ताकि वर्कशॉप उड़ीसा की भुवनेश्वर हौरगनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की राष्ट्रपति प्रबोपो सुबियांटो लेबाक अनी की मरी हेन फगटनब वफम कया खनगनी गृहमंत्री श्री गोविंद दास कौठौजम हरी सान खोटनब नहाजिंग पुनछिनब कांगलू फुरुप की खेनब थमदी चाब पुरप अचौब लौरी वफम से हूंपूमसुब राज्य थाकि सुब्रत मुखर्जी फुटबॉल टूर्नामेंट लिसंगनी इम्फाल वेस्ट की लंगजिंग आर्टिफिशियल टर्फ ग्राउंड हौदोपगी थौरमद सरुक यारदुना श्री गोविंद दास फोंदोकी नहाजिंगलमसीद माइपाब मियामें पादमसी की मिंगचत पुरप हमने राज्य की यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स विभाग ने छिब जही तरह तरह मखा कीपी मचासी टूर्नामेंट हौदोपगी थौरम यास की डिरेक्टर मयंगबम भेटो दुनाचार्ज अवार्ड डी एल इबोमचा पद्मश्री एन कुंजरानी ओ बेमबेम चिंब सरुक याखी असम राइफल्स की लिजिंग मखाद हौदोखीब कम्युनिटी रेडियो पलेल की बानी राज्य की गृहमंत्री गोविंद दास कौठौजम कक्जिंग जिला की मनु चलब पलेल गरी सन्दे तोान तोानब मखल की थौर क्या सन्दोना रेडियो स्टेशन हेन माइपाब चौखटना गृहमंत्री याफ पाजल पीखी नेशनल हाईवे 37 इम्फाल जीरीपम सेक्यूरीटी की अकनब सेलना नौमद तंगाई फदन चंग पोलम पुब गाड़ी सा मयांखई इम्फाल तम थोरुक्रे हरी जीरीपम पाउमी गाथम बिशोजीना पुलिस की पाउ पलटना इम्फाल तम थोकीब गाड़ी एल पी जी पुब गाड़ी निपान पेट्रोल पुब गाड़ी तरामरी डीजल कुनमा ट्रांसपोर्ट गाड़ी कुन सीमेंट पुब गाड़ी तरामाथो यावना अतै पोलम पुब गाड़ी यावरी हौजिक जीरीपम टैंकर तरामरी ट्रक चहु कुन पंदुना लेहौरी केंद्र की गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय नागालैंड की मकोकचुंग जिला चतना चाकु थौर की थब थौरमचिंगे मकोकचुंग की डेपुटी कमिश्नर अजीत वर्मा तोान तोानब विभाग की मकोकसिंग मिफम पांथोना जिला पैखलीब पैखटकदब चाकु थौर की स्कीम वफम कया खनखी माकि खोंचत मनुगद दौन मंत्रालय की सेंटंग मखाद पैखटब चाकु थौर की प्रोजेक्ट की फिवम सुखी खोंचत अगी वफम फोंदोलना मंत्री नहाय नागालैंड इना खुनब तोान तोानब कल्चरल हेरीटेज लेब लमदमनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पांदमदी अवा नुपोक लमदम चाखटनब है पांदम की मखाद इंफ्रास्ट्रक्चर चाखटनबना महूसादी लेरकलब संस्कृति गाक सिंधुना नागालैंड मियाम की पुनसी हेन फगटले फ्रंटियर नागालैंड टेरीटोरियल अथोरीटी सेमनब की दम नागालैंड सरकार नागालैंड विधान सभा की अखनब मिफम कौनब वारेब लौरे ईस्टर्न नागालैंड लेजिस्लेचर यूनियन राज्य सरकार की मकोक थोंब ऑफिसियल पांथोखीब खुद की मिफम वारेब लौखीबनी सरकार नहाय विधान सभा मिफम फ्रंटियर नागालैंड टेरीटोरियल अथोरीटी शक्ति पीनब मखाद लेगदब विभाग ट्रांसफर तब की वफम कया पुखत्न खनखी पाउ अ संविधान की चन कांगलोन केंद्र की गृह मंत्रालय की अयाब याब लेजिस्लेशन दाप तौखीबनी इंडियन मीटोलॉजिकल डिपार्टमेंट कर्नाटक की समुद खोबान गुजरात कोंकण गोवा मया थब महाराष्ट्र की मफम क्या नोंक सूगनी है विभाग अभी अरुणाचल प्रदेश बिहार छत्तीसगढ़ सब हिमालयन वेस्ट बंगाल सिक्किम हिमाचल प्रदेश की मफम क्या नोंक सूगनी अवा नुपू भारत उड़ीसा पंजाब उत्तर प्रदेश दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ की मफम क्या नोंग पारब तौना मरकसीद महाराष्ट्र की मफम क्या नोंग कन सूगनी है रेड येलो एलर्ट लौथोरे मियामना असोय गाम थोक्तनब एन डी आर एफ एस डी आर एफ सिंह मीकुप नहुम सिंह लेरी नोंग कन सूबना मरम ओदुनंगसी महाराष्ट्र की जिला खरद स्कूल कॉलेज सुटी थादोरे Enforcement Director in Assam, Mizoram, Amsung Nongsu, Bengal, Uttar Pradesh, Kimapam Kunda, Tihumbagi Tabak Satakre, Menmata ki Ain Kaina Pusilapa Kwa Supari Singamari Lenana, Tihumbagi Tabak Adu Satakibani. Kangpok Pisila ki New Kaitil Manbi Police Station Konba Padengba Kuntaki Umang Amadagi, Zahi Kunmangatagi Kuntra Pauki Manung the Oigataba Nupa Amagi, Achibahak Sang Pangle. Police ki paun hai myo ese higok masugi khongrau achang ba ma seli arangpo masugi ti sat amali li makuta sana masugi kudok ma masu sirami hakjang ase dems ki mokta thamli imong manung haiyang phawbogi manung da masak tak latrapati ain ki matung ina mathau pangthok lakani haidi tabi ba pawasi akashbani imphal takini Tribal Research Institute TRI Singi Mapangal Kankat and Babantam that Namidini Satakataba Zati Taki Workshop Masidagi Urisaki Bobaneso to Hogani. Kentucky Tribal Affairs Mantrale in a Sinduna Satakataba Workshop Basi Kentucky Tribal Affairs Mantri Zuel Oram Hutokani. Workshop Basida Muizani Hanbana Saruk Yagani Tarumatuda Kentucky Tribal Affairs Mantrale Emasung Sampurnayan Sankrit Bisabidale Barana Siga Yanavarul Kaya Sahito Nagani. Workshop Basi Pangto Pagimaru. Pantam di Ebagasida Ladyba, TRI Singi Apunba, Dot Map Amasem Bagaluna, Park Chowdoba Lok Singiangi Institution, Cultural Resource Center Amasung, Tribal Singi Sakut Bagi Toshil Taurang, Sempam Ama Oina Bagita Maktani. Pradhan Matri Narendra Modi Nangasi Indonesia ki Rastrapati Prabowo Subianto ga Jakarta ta leba Presidential Palace ta mipamama pangthoktuna lebak ani gi leina ri pamari hena phagat hana bagi matang da khanakre mipamatu da khanaki bawa pham singi manung da lalol itik sel thataba ngak sel maritime security digital technology masum cultural exchange hena ma pangal kan khat hana bawa pham yauri tungda luching ba ni yana se kaya sahi tungnaki Indonesia ki khwaidi ki wang pamana Bintang Adipura of the Republic of Indonesia Sri Modi da pito na ikai kumna pa utki Tharam duda Sri Modi na hai
1: 2018 mein bani hamari comprehensive strategic partnership aaj ek nayi udaan le rahi hai hum development security technology culture aur education har kshetra mein mahatvapurna kadam badha rahe hain mujhe vishwas hai aaj se bharat indonesia sajedari ka ek sunahra adhyay shuru hoga aur is sunahre adhyay ka bahut bada sakaratmak prabhav 21vi sadi ki duniya par hoga puri manavta par hoga
0: Tungda Pradhan Mantri Narendra Modi na Complex Parliament Republic Indonesia te satkani. Sri Modi na mapamaduda leba Bharat Macha Singa unaduna wadi sanagani. Indonesia ki khungchat loiraba tungda Sri Modi Australia amasung New Zealand pangani. Kentucky Road Transport amasung Highways Mantri Nitin Gadkari na ngarang awang bathaki mipam ama pangthoktuna. Leba kasida paikaliba multimodal logistic park roadways intermodal station amasung wayside amenities singi phibam yengsinkre. Mipamatuda Mantri Nahai Project Sing Asi Multimodal Connectivity Mapangal Kankat Hanba Sel Tungi Lamta Anoba Kudong Saba Kaya Panganba Amasung Lebak Asi Oiba Apun Bagi Sakutba Purak Pangam Halagani Bharat Nabi Nataruk Suba Project 17A Indigenous Steel Frigate Mahendra Giri F-38 Lagi Batang Zanumita Bisaka Patnam Da Kamisan Taugani Ngaksel Mantralay Nahai Jahas Asi Bharat Nabi Ki Warship Design Bureau Na Design Taugani Aduga Megamog Dogship Builders Limited Na Sabani Arunachal Pradesh Ta Itanagar Ki District Administration Ar Raja Ki Kwanung Aduda Sabagi Sang Hengalak Pa Yai Hai Na Advisory Thokre Miyam Na Yari Bamakai Sectional Lay Na Ba Amadi Sarkar Na Piri Basa Na Kang Noon Zin Ngak Na Zat Na Bakangan Ki Aduh betul, mari ibu bapa amuk hana. Gria Menteri Gobindas Kontok Zamna Haidi, sana kuna penan hazing amata oina punsin ba kanglu purukui kena batam daba amadi, nungsi sana ba puruk pada acoba thokdang laudi. Kendagi Griha Raja Menteri Nitai Nenda Raina, Nagaland ki Mokokchung Jila de Satuna, Sakwa Thawrang ki Thabak Thawram Singh yang Singkre. Tribal Research Institution Singi Mapangal Kankat Anaba Pandamda, Numinini Satakadaba Zati Taki Workshop Masidagi, Urisagi Bhubaneswar da Horogani. Amishung, Pradhan Mantri Narendra Modi Nangasi, Indonesia ki Rastrapati Prabowo Subianto ga Lebak Anigi Mari Hena Phagat Hanabagi Matangda, Wapungkaya Kanagani, Paulo Jari.

0: जाए सब दंग।
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है कार्यक्रम उमंग में। नमस्कार, मैं हूँ विमलेश।
1: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार श्रोताओं, आइए सुनते हैं सुविचार जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने। लिखते हैं,
2: संभव कार्य करने के लिए ताकत चाहिए किंतु असंभव कार्य करने के लिए आत्मविश्वास और समर्पण चाहिए।
1: बहुत सुंदर विचार, आप सबको धन्यवाद। आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है छत्तीसगढ़ लुकाऊपाली छतवन से पुनीत राम सूर्यवंशी, निर्मला सिंह, निहारिका सिंह और पंकज सिंह सूर्यवंशी।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे और हनुमान बोड़खे।
1: और ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र से सिद्धार्थ गोंडाणे, अर्चना ताई गोंडाणे, हीरामण शेंडे, प्रणय प्रसिद्धि और प्रतिभा गोंडाणे।
2: संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
1: रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू।
2: और राधे नगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी।
1: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं, आप सबका संदेश भेजने के लिए। आपसे निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे आपके सबके प्यारे कार्यक्रम उमंग से। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी प्यारी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में।
2: श्रोताओं, पिछले सप्ताह हमने चर्चा की थी विभिन्न खनिजों के बारे में। आशा है आपको जानकारी पसंद आई होगी। यदि आई तो जरूर लिख भेजिएगा अपनी प्रतिक्रियाएं।
1: जी
2: तो अजीत जी, क्यों न इस सप्ताह हम चर्चा करें एक ऐसी चीज की जो हम सबके चारों ओर उपलब्ध है, वो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी भी है, लेकिन
1: जी लेकिन उनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं पेड़ों की।
2: जी
1: आज हम चर्चा करेंगे पेड़ों के बारे में और लेंगे उनके बारे में दुर्लभ जानकारियाँ। तो आइए शुरू करते हैं विमलेश जी से।
2: जी अजीत जी, तो श्रोताओं आपको बता दें, पेड़ हमारे ग्रह यानी पृथ्वी के सबसे पुराने, बड़े और महत्वपूर्ण जीव हैं। इनकी उत्पत्ति लगभग 40 करोड़ साल पहले हुई थी। ये जानवरों और मनुष्यों की उत्पत्ति से भी बहुत पहले के हैं।
1: जी विमलेश जी, प्राप्त दुर्लभ जीवाश्मों से पता चलता है कि पेड़ पौधों के पैदा होने के लगभग 40 करोड़ वर्षों के बाद मनुष्य और शेष जीव जगत अस्तित्व में आया।
2: जी
1: विमलेश जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न मेरे मन में है और वो ये है कि पेड़ों की उत्पत्ति से पृथ्वी पर क्या परिवर्तन आए।
2: जी अजीत जी, सचमुच ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। पेड़ों की उत्पत्ति से पृथ्वी पर ऑक्सीजन बढ़ी, मिट्टी बनी और कार्बनिक गैसें कम हुई, जिनसे जानवरों के लिए भूमि पर रहना आसान हुआ। बिना पेड़ों के ऑक्सीजन कम मिलती, जिसके कारण स्थलीय जीवों का रहना असंभव हो जाता।
1: जी तो ये तो बात हुई पेड़ पौधों की उत्पत्ति की।
2: जी
1: चलिए अब जानते हैं पेड़ों के बारे में कुछ रोचक बातें। इनकी दुनिया ऐसे दुर्लभ और अनोखे रहस्यों से भरी है जो श्रोताओं सचमुच हमें हैरान कर देंगी।
2: जी सचमुच। तो श्रोताओं आपको बता दें कि पेड़ों का अपना सोशल नेटवर्क होता है, जिसे वनस्पति विज्ञानी वुड वाइड वेब कहते हैं।
1: अरे वाह, वुड वाइड वेब यानी यहाँ भी इंटरनेट की तरह www है।
2: जी
1: लेकिन विमलेश जी, ये होता क्या है?
2: अजीत जी, ये कोई इंटरनेट नहीं है, लेकिन पेड़ों और पौधों के बीच भूमिगत संचार का प्राकृतिक जाल है।
1: जी हमने अक्सर मातृ वृक्षों के बारे में सुना और जाना है।
2: बिल्कुल,
1: मातृ वृक्ष उन्हें कहते हैं जो वृक्षों के समूह में सबसे बड़े और पुराने होते हैं। उनकी जड़ें सूक्ष्म कवक या फंगस द्वारा दूसरे पेड़ों से जुड़ जाती हैं।
2: जी
1: इसके माध्यम से पेड़ आपस में पानी, पोषक तत्व और रासायनिक संदेश एक दूसरे को भेज सकते हैं।
2: जी ये जड़ें कमजोर या छोटे पौधों को पानी और अन्य पोषक तत्व भेजती रहती हैं। ऐसे पेड़ों को मातृ वृक्ष इसलिए कहते हैं क्योंकि वे एक माता की तरह दूसरे पेड़ पौधों का पालन पोषण करते हैं। तो ये तो बात हुई पोषक तत्वों की। अजीत जी, आपने कहा कि पेड़ एक दूसरे को रासायनिक संदेश भी भेजते हैं, इसे जरा श्रोताओं को तो बताइए।
1: जी विमलेश जी, ये जानना सचमुच बहुत रोचक होगा। देखिए, पेड़ पौधे बोल तो नहीं सकते, लेकिन वे रासायनिक संकेतों के माध्यम से एक दूसरे को हवा और कवकों के माध्यम से संदेश भेजते हैं।
2: जी
1: ये प्रकृति की अद्भुत व्यवस्था है।
2: श्रोताओं, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जब किसी पेड़ या पौधे पर कीटाणु हमला करते हैं, तो वे पत्तियों द्वारा हवा में एक विशेष प्रकार का रसायन छोड़ते हैं, जिसे दूसरे पौधे या पेड़ मानो सूंघ लेते हैं और वे पहले से ही रक्षा रसायन बनाना शुरू कर देते हैं,
1: और इस प्रकार से उन्हें आने वाले खतरे की चेतावनी मिल जाती है। इससे उनकी रक्षा प्रणाली सक्रिय हो जाती है। वैज्ञानिकों ने ये भी पाया है कि पेड़ पौधों में बहुत धीमे विद्युत संकेत भी कार्य करते हैं।
2: तो श्रोताओं, पेड़ों के बीच का संचार मूक है, लेकिन बहुत प्रभावशाली होता है। वे बेशक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन रसायनों, आपस में जुड़ी हुई जड़ों, कवकों और विद्युत संकेतों द्वारा वे आपस में संवाद कर सकते हैं।
1: एक बात और श्रोताओ, पेड़ पौधों में भी रोगों या चोट के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता होती है। जब उनकी छाल कटती है या छीली जाती है तो वे एक प्रकार का रसायन बनाकर अपने घाव को भरने का प्रयास करते हैं।
2: जी।
1: इसलिए आपने देखा होगा कि जब इनकी छाल छीली जाती है तो कुछ समय बाद वहाँ नई छाल विकसित हो जाती है। ये ऐसा ही है जैसा कि हमारा शरीर भी प्राकृतिक रूप से घावों को भर सकता है।
2: इसलिए जंगल केवल पेड़ों का समूह नहीं बल्कि एक दूसरे से जुड़े जीवित समुदाय की तरह कार्य करता है। तो श्रोताओ, कैसी लगी ये जानकारी, हमें जरूर बताइएगा। और अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
1: तो आज का प्रश्न है श्रोताओ, मातृ वृक्ष किसे कहते हैं और क्यों? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: मातृ वृक्ष किसे कहते हैं और क्यों?
1: आप हमारे IBRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर अपने संदेश भेज सकते हैं। और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं एक खूबसूरत गीत संगीत से भरा कार्यक्रम चींटी।
2: ये कार्यक्रम हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित है जिसमें चींटी के परिश्रम और दृढ़ संकल्प के बारे में एक सुंदर गीत द्वारा बताया गया है तथा बच्चों को प्रोत्साहित किया गया है कि वे भी अपने जीवन में निष्ठा और दृढ़ संकल्प के साथ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें।
1: तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। हर पल चलती जाती चींटी,
3: हर पल चलती जाती चींटी,
1: श्रम का राग सुनाती चींटी,
3: श्रम का राग सुनाती चींटी,
1: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
3: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
1: दाना चुनकर लाती चींटी,
3: दाना चुनकर लाती चींटी,
1: सचमुच कैसी कलाकार है,
3: सचमुच कैसी कलाकार है,
1: घर को खूब सजाती चींटी,
3: घर को खूब सजाती चींटी,
1: छोटा तन पर बड़े इरादे,
3: छोटा तन पर बड़े इरादे,
1: छोटा तन पर बड़े इरादे,
3: छोटा तन पर बड़े इरादे,
1: नहीं कभी घबराती चींटी,
3: नहीं कभी घबराती चींटी,
1: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
3: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
1: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
3: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
1: काम बड़े करके दिखलाती,
3: काम बड़े करके दिखलाती,
1: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
3: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
1: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
3: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
1: हमको यही सिखाती चींटी,
3: हमको यही सिखाती चींटी।
1: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन, आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

0: तो सुना आपने, कैसा लगा ये गीत? अच्छा लगा ना? तो अब सुनते हैं चींटियों के बारे में कुछ और मजेदार बातें। चींटियां बहुत मेहनती होती हैं। वे समूह में यानी मिलजुल कर काम करती हैं। और तो और, आपको मालूम है अकेली चींटी अपने वजन से 50 गुना अधिक वजन उठा सकती है। इतना ही नहीं, आपने जरूर देखा होगा कि यदि कोई चींटी वजन नहीं उठा पाती तो दूसरी चींटियां तुरंत उसकी मदद के लिए आ जाती हैं। है ना मजेदार बात? तो क्या सिखाती हैं हमें ये चींटियां? हमें हमेशा मिलजुल कर रहना और मेहनत से काम करना चाहिए। अच्छा, अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा मालूम कीजिए कि चींटियां कितने रंगों की होती हैं। एक बात और, इस कविता में चींटी को कलाकार कहा गया है। जरा सोचिए और बड़ों से भी पूछिए कि उन्हें कलाकार क्यों कहा गया है। अभी आपने सुना ये खूबसूरत गीत चींटी, और आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है नील के किनारे।
1: इस कार्यक्रम में मिस्र की प्राचीन सभ्यता के विकास में नील नदी की भूमिका के बारे में बताया गया है।
2: Your attention please, Air India announces the arrival of its flight number AI-806 from Bombay. Your attention please, Air India announces...
3: पापा, कायरा का ये हवाई अड्डा कितना शानदार है।
4: हाँ बेटा।
3: दादाजी तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे।
4: यहीं कहीं होंगे, अभी मिल जाएंगे। अच्छा चलो, सामान की ट्रॉली लेकर उधर से निकल चलते हैं।
3: मुझे लगता है दादाजी आए ही नहीं। याद है जब हम उनके पास मॉरिशस गए थे ना, तब भी वो हमें लेने नहीं आए थे।
4: अरे बेटी, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे वो जानबूझकर हमें लेने नहीं आए थे। याद नहीं, उन्हें भारतीय दूतावास के किसी जरूरी काम से सुरिनाम जाना पड़ गया था।
3: तो अब भी उन्हें दूतावास के काम से कहीं जाना पड़ गया होगा।
4: हो सकता है कि...
5: हेलो मिस्टर वर्मा, माफ कीजिए मुझे आने में देर होगी।
4: अरे कादिर, तुम पिताजी नहीं आए?
5: दरअसल उन्हें किसी काम से बाहर जाना पड़ गया। उन्होंने कल रात मुझे फोन करके कहा कि मैं आपको लेने हवाई अड्डे पहुंच जाऊंगा। आपको घुमाने की जिम्मेदारी भी मेरी।
4: अच्छा अच्छा, कादिर मेरी बेटी श्वेता से मिलो। और श्वेता, ये हैं अब्दुल कादिर मोहम्मद फादल।
6: अस्सलाम वालेकुम।
5: वालेकुम अस्सलाम। अरे वहाँ श्वेता बिटिया को तो मिस्री अभिवादन भी आता है। चलिए मिस्टर वर्मा, बाहर गाड़ी खड़ी है, आपको आपके पिताजी के घर पहुँचा दो।
4: ठीक है, चलो श्वेता अपना हैंडबैग उठा लो, आओ
7: आओ चलो आओ।

0: और सुनाओ कादिर, तुम्हारा शोध कार्य कैसे चल रहा है?
1: अब तो पूरा होने वाला है।
2: कादिर अंकल, आप किस पर शोध कर रहे हैं?
1: मिस्र की प्राचीन सभ्यता और सिंधु घाटी की सभ्यता की पारस्परिक समानताओं पर।
0: इसी सिलसिले में कादिर 2 साल भारत में भी आकर रहे थे।
2: अच्छा, तभी तो आप इतनी अच्छी हिंदुस्तानी बोल लेते हैं।
3: अरे कादिर अंकल, मैंने तो सोचा था काहिरा पुराने ढंग का शहर होगा, लेकिन यहाँ तो ऊंची ऊंची इमारतें हैं, चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं।
1: बेटा, ये काहिरा का नया भाग है। जैसे तुम्हारी नई दिल्ली है ना, काहिरा भी दिल्ली की तरह कई बार उजड़ा और कई बार बसा। दिल्ली की ही तरह इसके नाम भी बदलते रहे। आज इसका नाम अल काहिरा है।
3: अच्छा, काहिरा नहीं अल काहिरा।
1: हाँ।
3: पापा पापा, वो देखो नील नदी है ना।
0: हाँ, वो नील नदी ही है। काहिरा शहर नील के किनारे बसा हुआ है। जानती हो, नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 6648 किलोमीटर है।
1: लीजिए, वो रहा आपके पिताजी का घर। मिस्टर वर्मा, घर में एक नौकर है, वो आपकी देखभाल करेगा। अभी आप लोग आराम करें, मैं शाम को आऊंगा, फिर आपको काहिरा शहर घुमाने ले चलूंगा।
0: अरे कादिर भाई, एक प्याला चाय तो पीते जाओ।
1: नहीं, अभी नहीं, शाम को। अभी मुझे एक व्यक्ति से मिलने जाना है अपने शोध कार्य के सिलसिले में। अच्छा, मैं चलता हूँ।
0: अच्छा अच्छा।

0: कादिर अंकल, ये बाजार तो बिल्कुल पुरानी दिल्ली जैसा है। फुटपाथ पर लोगों ने दुकानें लगा रखी हैं और देखिए कैसे आवाजें लगा लगा कर सामान बेच रहे हैं।
1: और वो देखो उस दुकान पर सूती कपड़े के कितने थान रखे हैं। जानती हो बेटी, मिस्र की कपास सबसे बढ़िया मानी जाती है।
0: पापा, यहाँ के लोगों की वेशभूषा कितनी अच्छी है। पुरुषों ने लंबा सा चोगा पहन रखा है और ढीला पजामा, सिर पर टोपी है।
2: इस चोगे को गलाबिया कहते हैं।
1: और वो देखो औरतों ने लंबी बाहों वाले कुर्ते पहन रखे हैं।
0: हाँ, बुर्के में कुछ ठीक से दिख नहीं रहा। अच्छा कादिर अंकल, सभी औरतों ने तो बुर्का नहीं पहन रखा, ऐसा क्यों?
2: अब धीरे धीरे बुर्के का रिवाज कम होता जा रहा है।
1: अरे बाप रे, यहाँ कितनी भीड़ है। कादिर, क्या आज कोई खास बात है?
2: अरे नहीं मिस्टर वर्मा, खास बात यही है कि यहाँ की जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है। रोजगार की तलाश में लोग गांव से शहरों की तरफ आ रहे हैं। जानते हैं काहिरा की जनसंख्या 1000 व्यक्ति प्रतिदिन की दर से बढ़ रही है, और नतीजा ये कि यहाँ लोगों के पास रहने को घर नहीं।
0: अच्छा, तो फिर ये लोग कहाँ रहते हैं?
2: कुछ लोग इमारतों की छतों पर अपना घर बना लेते हैं, कुछ मकबरों और कब्रिस्तान में डेरा जमा लेते हैं, कुछ तो झुग्गियां बनाकर रहते हैं।
0: दिल्ली में भी तो बहुत से लोग झुग्गियों में ही रहते हैं।
2: हाँ, मैंने कहा था ना कि दिल्ली और काहिरा की बहुत सी बातें मिलती हैं। चलो आओ, तुम्हें जलेबी खिलवाएं।
0: जलेबी? वैसी ही जैसे हमारे देश में मिलती है?
2: हाँ बिल्कुल वैसी।
1: कमाल है
2: मिस्टर वर्मा, जलेबी नहीं, यहाँ बालूशाही, फेनी, मेवे का हलवा, सभी मिठाइयाँ मिलती हैं।
1: वाह।
2: और ईद के मौके पर सिवैयाँ भी मिलती हैं।
0: मैं तो मेवे का हलवा खाऊंगी।
2: ठीक है, चलो उस कोने पर दुकान है जहाँ मेवे का हलवा बहुत बढ़िया बनता है,
1: और इसके बाद घर लौट जाएंगे।
0: इतने जल्दी?
1: अरे कल सुबह पिरामिड देखने नहीं जाना क्या?
0: हाँ, जाना है।
2: फिर ठीक है, कल मैं आप लोगों को सुबह लेने आऊंगा। अभी चलकर मेवे का हलवा खाते हैं।

0: पापा, यहाँ तो चारों तरफ रेगिस्तान है। हम लोग काहिरा से कितनी दूर आ गए हैं?
1: कोई 8 मील दूर। वो देखो श्वेता, वो रहा गीजा का महान स्फिंक्स।
0: बाप रे, कितना विशाल है
1: ये स्फिंक्स। 18 मीटर ऊंचा और 57 मीटर लंबा है। कहते हैं ये 5000 वर्ष पुराना है।
0: अच्छा कादिर अंकल, स्फिंक्स का चेहरा आदमी जैसा और बाकी शरीर बैठे हुए शेर जैसा क्यों बनाया गया है?
1: पहले लोग ये रहस्य नहीं जानते थे, लेकिन फिर इस विशाल स्फिंक्स के पंजों के बीच एक प्रार्थना कक्ष में एक शिलालेख मिला, जिससे पता चला कि ये स्फिंक्स सूर्य देव हर्माचीज का एक रूप है। इसकी स्थापना इसलिए की गई थी जिससे ये गीजा के पिरामिडों को शैतानी शक्तियों से बचा सके।
2: वाकई बड़ा भव्य है।

요다름이강 라진다라세이다 산당다사라타타나야낭 샤말라 산더무르띵 본디일로카비라망 라구쿨라틸라강

श्रीउमावती सदाशिवनहरितारो प्रियभवानीदुर्गे अमृतापरिपूर्णारामायणकामधेनु सुरताजनकृतवशो श्रीवाल्मीकिमुनि ततुः अतिवरऋषिमेतदरामायण पिबन्ति मुग्धा कोटिमा खरजो मृषा सुमहैर्ये पार्वती ऐवो श्रीप्रभुरामचन्द्रगी सातकान्दरमायोनशिना कामधेनु सन्विगिमशकुलौरे सुमहरका श्रीवाल्मीकिमुनिन दद्दुहा सङ्गोम सुम्लिव निपामगिमशकुलौजरगा नाम्बु सर्वोल्लौविरिव भक्तवैष्णो कुन्दवासी ब्रशरसैया ख्वाय पुनमग्न वशरूपी सनौ मशागी मशक्पु लौरे सुमहररगा श्रीवाल्मीकि मुनीन सुन्दरग्लिवा सातकान्दरामायोल शिवु थक्पगि पियन्ब नायद्रवा अमृत कोटिदगि हेन थुम्लवा ऐवो श्री प्रभु रामचन्द्रगि सातकान्दरामायो निदो दुर्गा वारिता जरिवि हिमवाल गिरिगि मशानुपि बिन्दसोल गिरिगि नमशुनुपि आदि अन्त किङ्माई सती वैरवि पार्वती दुर्गान खुशातरा लोनरगा मवो शिव महादेवगि मफमधुमकर प्रभो ननाई दुर्गान सातकान्दरमायोन्ता जवदा ननाई दिहेद लैरिव सर्वपावशि नुम नुम यशुम शुम कोलकपन हौजिक्ति खजिक तमंगायरे इरोइलोइव उतर कांदा हैदन लै घरवा कांद दुगि मनुंग दु मकरा जगत भवान श्री राम चंद्रगी सभा दरबार दा अगस्त मुनि नवारी लिबि रखपदा अराबुन महाराज गी दिग्विजय शपगी वारी दु ननाई नत्ता जब हौजरी मधुगि मखाद लाकदवा रावण गी दिग्विजय गी मतम अदुदा कर्तवीर्ज अर्जुन गा रावण मा गल्लान थेंगनबगी ऐधाई मतांग दो ताजरगा ननाई दिहेद लैरिब पाव शिम तंको पयावरे यंगजगे मखा वारी लिबिरो प्रभु श्री उमावती सदा शिवन हरि तारो ब्रिय भवानी दुर्गे महेशमती हाइन कौब देश लैपाक अदुगी मनुंग अदुमकदा चन्द्रवंशा सागैदा कर्ता ब्रिज अर्जुन्ना निंथौ ओइदुना पालमी मखुडली सिंहलोंबा कर्ता ब्रिज अर्जुन श्री श्री विष्णुगी सायोनी श्री विष्णुगी सायो लोइबना जगन्माता लक्ष्मी इमान तुंदलियंगदन लैबीरगा अवत अपाल लैतना यकनबा कनान खुदुम सनब ngamdana प्रजा पालोन तौदुना पानबा महेशमती लैपांग निदो दुर्गा एक दिनो नोमगि नुमिदमदा करदा ब्रिज अर्जुनना महारानी मयाम लोइनदना इंखलगली बि जोबोती कैना पूदना मनाई मशन कयाग लुइन रे हररग नरमदा गंगादा जलकिली शानरुषि हाइदना खोमी लानमी तेंगोन पूदन लाखी नरमदा गंगा गिरो नुंगदुमकदा महारानी मयाम जोबोती कैना कयाग लुइन रे हररगा अर्जुन महाका इरेन जलकिली शानदन नुआइन लैरिये दुर्गा हरिब मतम शिम करा लंका गि दश गरीब रावोन मकुक तरा लुंगबा पाम्बुम कुन पानबा खुलाई कुन पाइबा रावोन महाराजन दिग्विजय लाप काल असिदा मागि तुंद कल कल्लवा परस्त सेनापति शुक सारोन मरीश हिंसाब गि तेंगोल मयाम सिना दोलाई तुंगबा परेंग परेंग पंक्ति पंक्ति सामु तुंबा परेंग परेंग पंक्ति पंक्ति सगोल तुंबा परेंग परेंग पंक्ति पंक्ति
कनागी मुशोल मुगदर पाई व कयाशिन परिंग परिंग पंती पंती मांगद नाना जंत्र पुंशिन कयाद धरंग धरंग धरंग गिरे हरे रे गा लोकताई नदा नदी गिरी गुहा बोन उपबोन कया तुबत तुबत तुबत तुबत शम्य हर रग लाग पशीना प्रिय भवानी राबो निंथौ महेशमती लैपाक यौ घरे प्रिय लैरिबा दुगुम लबा करता ब्रिजा अर्जुन गी सिंह द्वारा नुपोक थोंग दुम करा राबोन महाराज थुंगरे रावण महाराज की बमा सुर खोजे न लाउ रही हा हाय करता ब्रज अर्जुन की द्वारी थोंग संग कना कना ले गई थो हाउ रावण मा की खोजेन तारब कान अदुदा द्वारी निपा अनि ने थों घे हेट हांगो रखा लेरिब पाम्बुम कुन पानबा मकु कुल्लों बदश ग्रीब राबोल सी खोमी लानी तेंगोन खुशु खुलाई पाइब कैयाग सन थों लेपतने लेरमी द्वारी निपानी संग धलकतन नमो नमो महाराज नराई खोईन पूरीब थों द महाराजना थों हांग हैदर या थंग पीरक पा करी तक पी गदगे महाराजा परिशोई अशेंग बदो पीन भी राबोन महाराजन द्वारी निपानी येंग गहे है द्वारिया ऐसे अतई कना नती लंका लैपा की अराबो निंथौ हैदो ऐनिदना लाई कोती कुंथरा हुंदोई करथोन तौरग लैरिबा देव सभा लाई मयाम न किनरी बराबोल हैदो ऐनि महाराज मिंगतावदी कुइरे शक्ति नशीन आहान बनी उजाबा करी तक पी गदगे सिंहब लैतन तक पीउ महाराजा हैदवरेया ऐन लाई बसे दिग्विजय लागपनी लैपाग सिगे निंथौ करता ब्रिजा नबुंगो निंथौ दो मधुगी नाग तेले हरग लाबोन ऐ दिग्विजय लाई लान सिंह सी थोलो हायरु सुशल करीगुम राबोल ऐबु कीब लेरग ना अथेन पोटक लोइन रग सरना गोत संजौ न थ्वाई कनबीनी हायदना पांगतंग पीचो सलु द्वारी राबोन महाराज गी नापन गी वहाय दु तारे हररग द्वारी निपा अनीना महाराज महाराज ने तक बिरी बवा फमदुगी ओइरबदी हौजिक कोनुंग सिगी मनुंगदा लैपाक सिगी निंथौ अर्जुन लैती कराइ दे सखीबा लैपाक सिगी निंथौ दुदी महारानी मया जोबोती कया कया लुइनरे हररग नरमदा तुरेंदा जल केली शानरुनी हाइदन सखीनी महाराजा शिव शिव तंजा शिम कद जल किली शान विशेखरीबा लैरिबा दुगुम लवा करता ब्रज अर्जुन मान लैरिबा जगा अडुड राबोन ऐसा लगे महारा लिंग भी खिनु सोईदना लैपाग सिगी निंथौ महेशमती राज सोईदन यौरानी यौरब कान मत मधुम कदा महाराज गे अपाम्ब पुनमक निंग सोईदन थुंगनी महाराजा मफम सिद नुआइन पोथारग लैबियो रावण महाराजन हा है द्वारिया ऐ बिजोय लागपनी नबुओ निंथौ दो लागप ऐ गायब गमगदब नते चलगे मानन लैरिब नरमादा गंगा खोंबान ताना ऐ मा थेंगरुरगी हायरम लग खोंमी लानमी तेंगुन कया या थंगपीरे हररग मा प्रिय भवानी दुर्गा लैरिब करता ब्रज अर्जुन लैरिब नरमादा गंगा ताना शट दो लाइन अरे पल्लैत न गद गद गद गद गद गद गद गद गद गद गद थम दन लाग पशी मशीन प्रिय भवानी दुर्गा नर्मदा गंगा यौगद खजिक वाली गई कान मत मधुम कद बिंधगिरी सिंह जाओ थेनरे हरिब बिंधगिरी सिंह नापो मधुम कद हौरिब हैपान लैपान लैरिब उहै वहै कया कया निंथी न पाली कया निंथी न लई शाली शाली बल लई अदुगी मरक उहै वहै मया मधुगी मरक अदुम कदा उसे वया कया ना खोईमु लैरां कया न मागी मागी पंच सुरन नुंशी न ngरं ngरं ngरं ngरं ngरं खोंगन लैरी दो दुर्गा मधुगी मनु मधुम कदा दानबा गंधर्वा जैखर रैख्या लाई देव सभा कया सु नुंगाइना इरे शानदन ले
रावण महाराज लाग्नु उपदा देव सभालाई मयाम पुनः मगदुन हरि हरि लाग्लिब श्रीलङ्कागी रावणे करी गुम्बराई खोय सेमान उखिब खङ्खिब तारगदी दशा सोयदन तारनी अदुनै खोय सेलौर सेदना देव सभा मयाम पुनः मगदु मागी मागी धाम द लोय इन सेन घरेन हे दुर्गा रावो देव सभा मयाम कायदर सेन मधु अराबुन ईशा हंति मोमो नुई शिव शिव अरा बोल ऐ लाकर लाई मयाम सी लोई सेन रे अरा बोन ऐसी की दी की जात हो रे को अरा बोन खन खन निंग निंग बिंदगिरी सिंह जाओ ठक हेत का खली शट हेत कुंधर बकाल दुम कर प्रिय भवानी दुर्गा फजर बाप नर्मदा गंगा रू हेक थे नहीं हरिब मतम से नुमित चब युंब मतम नी दुर्गा लेरिब मयाम पुनम से ओलांग बन दी हे पुनम पुंशोट खुमांग शोली रावण महाराज न मनाई सिंह यंग दना मंत्री अमदी लेरीबा अदुंगल्व सेनापति येंगे हररगा दिहे सिंह हग इंहनसी नरमादक गंगार कुंदरग स्नान लांग सेदन मयाम पुनमक आभुरुन बेस होंदु ए हररगा नरमादक गंगार सुंधदना इरिन जल किली नुआइन सनदन लेरी नैहाग लैरी हररग प्रिय भवानी दुर्गा लैरिब रावण महाराजना लै सु लैरिब सिंह थोदिंग मयाम पुनमगद सनागी सेम्पक्षामदा इरें हापी हररगा मखुद कुल्लदुन खुजो खुजो लौरी हररग नरमादा गंगादा इरें लै सु मयामदो थाधरगा शिवलिंग पुथोक्तन शिव पूजा कली महादेव मबूगी नाम श्याम निपान रावण महाराज ने थीरी ओम गणेशं महेशं सुरेशं शिव शास्त्र भीरा शिवा सलीलंगनाथेरो नाथो वीरेन्द्र तमाशो शोभितो बामंगे जतामैधे गंगा तरा तरलितं विजलितो सुदर समी रूखंद हेमनाथा देवनाथा उमावती हर शंकर गौरी कृष्णनंद कैलास वासी ओम नमो शिवाय ओम नमो शिवाय ओम नमो शिवाय हैदना अरामुन महाराजना शिवलिंग द पूजा तौरिये दुर्गा हरिव तंजा मतम शिमक द पार्वती अदु गुमलब करता ब्रिज अर्जुन दो महारानी कया इंखलगली भी जोबोती कैना कया दुगल लोई नरे हररगा गंगा की इरो नुंद जल के लिए शानावा इबी मम मया मदो लग्न रगिये दना अर्जुन मागी मखुल्ली सिंगडू इसिंगडू ठक हे खनगी बबू इसिंगडू शट हे तो मोखली लेरी बा अदुलो मोखली बे इसिंग अदु दा इबे मम मयाम जोबोती कैना कया अदु न इरो इरो इदन नोक नोक तन सन जाबा मदु उरे हरेर करता ब्रिज मोमो नु ए हरेर गा मया मदु गि मतो येंग दन लेरी लेरी बा मखुली सिंग थक हेद सिंग थो ई इसिंग वा हेद सेन धगी अमुक थेंगी अमुक थादु ई अमुक थेंगी अमुक थादु ई इसिंग इरे अदुन उरुरुरु लै तन पुधरक बना अराबुन महाराज की पूजा की लै सु लेरिब सिंग थोइदिंग पुन मंगदो इसिंग इरे यदु द ताउ थगी बन अराबुन महाराज मदु उरुरे हरेरे के शिव शिवा अइन पूजा कलिब लै सु लेरिब सिंग थोइदिंग ताउ द हलिब सि करंब देवता करंब लाइन ओरिब जानो हाय मटिक चाब दंडी पीगे खंग रोइद्रो दो अराबुल इति खंगन गे दना सुक सारोन अनि येंगे हररगा हा हाय सुक सारोन महाराज यमो अई पुज्जा गि लई सुशिन थोदिंग पुडमक ताउ द हलिबशी गंगा नरा कर मध्य बता लाइननो सलु खोंगुल लिरसो खाइदन या थंग पीरक काल अदुम कर सुक सारोन अराबुल महाराज गि या थंग फंग काल अदुम कर थुन यांग न सखे मतम अदुम कर प्रिय भवानी दुर्गा कर्ता ब्रिज अर्जुन रानी कयाग जल के लिए शानवा इसिंग अदो अमुक थप अमुक थादवा अमुक थादवा अमुक थप तव बदुगी इसिंग इरे अदुना पूजा की पोलम तव धवनी अपशी खंगरे शुक शारोलनी अशी थून यांग शाद लाए हररग रावण महाराज की मफमदा पाव पुन मगतमी महारा महाराज की पूजा की पोलम ताउ द हलिब शिरे अतई नते नरव्यता मी मशा करता ब्रिज अर्जुन ना लेरिब इबे मम मयांग लोई नरग जल केली शानबदो मधुर इशिंग अदो
탈리 아묵 타데이 아묵 탈리 아묵 타데이 더보기 이샤인 이레이 아두나 부자기 볼럼 이레 더우더버니 마하라자 쇼고 샤롤러니기와 따라가라 본 마하라자 디헤 택택 언니 이 파피 이 까이더번 나라 베타미 마샤 아르전 나시디 아라군 이 쿠박다 프란 로우르르기에 다나 코밀란미 띵곤 까야 로이냐레 하르르가 카르타 브리즈 아르주나 레이리바 나라마다 강가 콩반 따나 샷 헤더 라파 남강다 가르다브리자 아르준기 세나바티 구밀란미 땡곤 까야도 레이람바니 도르가 아라본 마하라자나 하하이 나코이까나까나노 아라본 마하라자 우바다 세나바티 숑토르그다는 쿨로나르가 마하라자 아이코이시 레이파시기 닝토우 가르다브리자 아르준기 마나이신니 오 나코이 가르다브리자 아르준기 마나이신 오르브디 샬로 나붕오 Ning tau da pao piru so. Arabun dik bijoy lai. Lai di ba adung laba lan singa ba laak pani hok jimak. Lan gi sa joan tau raga tolo hair so. Karigumba kirab di. Sana gota sang jang na thai kan bini. Karigumba aibu kidra ba. Ma bu pran lau re hararaga ma gi mahara ni maya. Zobo ti kaina inkhalag lebi nipi kaya do aina langka lai paakta pura ga. Arabul aigi mahara ni haap kani hai da na hair so shalo. मतमदुम कडा सेनापतिनो मोमोन नुई हेरनग महाराजा नंगना करता ब्रिजा निंथौ छिन्न बशारी महाराजा सोयदन न थ्वाई मांगन महाराजन पालिबदुदि न कूक

0: आकाश बानी इम्फाल हौजिंग नोथिल की पुंग अनी मिनट तरह मंगा चले दिल्ली दगी रिले दा दोपहर समाचार फंबीरगनी
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण खनिजों, तकनीकी, कृषि और समुद्री सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री मोदी को जकार्ता में इंडोनेशिया के सर्वोच्च सम्मान बिंतांग आदिपूर्ण ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित किया गया। गुजरात उच्च न्यायालय ने वर्ष 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में 38 दोषियों की मौत और 11 की आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में डोरन कप टूर्नामेंट 2026 की ट्रॉफियों का अनावरण किया। और दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 3 दिन में गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में और आगे बढ़ेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। दोनों नेताओं की उपस्थिति में आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच 2018 में स्थापित व्यापक रणनीतिक साझेदारी प्रगति के नए चरण में प्रवेश कर रही है।
2: 2018 में बनी हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आज एक नई उड़ान ले रही है। हम डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, कल्चर और एजुकेशन हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं। मुझे विश्वास है आज से भारत इंडोनेशिया साझेदारी का एक सुनहरा अध्याय शुरू होगा और इस सुनहरे अध्याय का बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव 21वीं सदी की दुनिया पर होगा, पूरी मानवता पर होगा।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बढ़ते आपसी विश्वास ने रक्षा, सुरक्षा और समुद्री क्षेत्र में सहयोग को मजबूत किया है और दोनों देश रक्षा, आपदा प्रबंधन तथा औद्योगिक क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करने पर सहमत हुए हैं।
2: हमारे देशों के बीच बढ़ता विश्वास हमारी रक्षा, सुरक्षा और मैरिटाइम सहयोग को मजबूत कर रहा है। आज हमने डिफेंस एक्सचेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनाई। अब हम दोनों देशों के कोस्ट गार्ड हिंद महासागर में मैरिटाइम सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए मिलकर काम करेंगे। हमने ब्लू इकोनॉमी, पोर्ट डेवलपमेंट और मैरिटाइम ट्रेड में आपसी सहयोग बढ़ाने का भी निर्णय लिया है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हुए समझौते से भारत की उच्च गुणवत्ता वाली और सस्ती दवाएं इंडोनेशिया के लोगों के लिए अधिक आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI को जल्द ही इंडोनेशिया की भुगतान प्रणाली के साथ जोड़ा जाएगा, जिससे व्यापार और यात्रा दोनों में आसानी होगी।
2: पीपल टू पीपल टाइज हमारे संबंधों की सबसे बड़ी शक्ति है। हमें बहुत खुशी है कि भारत की UPI इंडोनेशिया के पेमेंट सिस्टम के साथ इंटीग्रेट होने जा रही है। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ ट्रैवल दोनों को ही बल मिलेगा।
1: श्री मोदी ने कहा कि वे कल योग्यकार्ता में राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ 1000 साल से अधिक पुराने प्रम्बानन मंदिर की संरक्षण परियोजना का शुभारंभ करेंगे। उन्होंने इसे भारत और इंडोनेशिया की साझा सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बताया। उन्होंने घोषणा की कि दोनों देश गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर की इंडोनेशिया की ऐतिहासिक यात्रा की शताब्दी को उत्साह के साथ मनाएंगे। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया।
2: मैं इस गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए प्रेसिडेंट प्रबोवो को उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और आज इंडोनेशिया की यात्रा करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज सुबह मुझे आदर के साथ इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। ये सम्मान कोटि कोटि भारतवासियों का है, इंडोनेशिया के लोगों की भावनाओं का है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर बधाई दी है।
3: रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि ये असाधारण सम्मान प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व, परिवर्तनकारी राजनीतिज्ञता और आपसी विश्वास, सम्मान और साझा प्रगति पर आधारित वैश्विक साझेदारियों को मजबूत करते हुए भारत के राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने की उनकी अटूट प्रतिबद्धता की एक सशक्त मान्यता है। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि ये सम्मान सभी भारतीयों के लिए अत्यंत गर्व का विषय है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि ये सम्मान भारत की व्यापक रणनीतिक साझेदारी को सुदृढ़ करने और भारत आसियान संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी के निरंतर प्रयासों का प्रमाण है। शिक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये देश के लिए गर्व का क्षण है। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये प्रतिष्ठित सम्मान भारत इंडोनेशिया साझेदारी को और मजबूत करता है। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। उनकी यात्रा से भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड जाएंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गुजरात उच्च न्यायालय ने 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोटों के मामले में आज विशेष न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें 38 दोषियों को मौत की सजा और 11 अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। न्यायमूर्ति एवाई कोगजे और न्यायमूर्ति समीर दवे की खंडपीठ ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ सभी अपीलें खारिज कर दी और मामले में आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के सदस्यों को दी गई सजा को बरकरार रखते हुए अपने फैसले को सही ठहराया। 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में 70 मिनट के भीतर लगातार हुए 21 बम धमाकों में 56 लोग मारे गए थे और 200 अन्य घायल हुए थे। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के बैंक खातों में संदिग्ध धनराशि के हेरफेर और अनियमित वित्तीय लेनदेन के मामले में आज कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर छापेमारी की। निदेशालय की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि 150 करोड़ रुपए से अधिक की भारी धनराशि संदिग्ध उद्देश्यों के लिए विमानन और यात्रा कंपनियों के माध्यम से भेजी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 2026 डोरन कप टूर्नामेंट की ट्रॉफियों का अनावरण किया। राष्ट्रपति ने टूर्नामेंट में भाग लेने वाली सभी टीमों और खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने उनसे खेल भावना का पालन करने और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके इस ऐतिहासिक प्रतियोगिता की प्रतिष्ठा को और बढ़ाने का आग्रह किया।
4: फुटबॉल विश्व के सबसे लोकप्रिय खेल में से एक है। ये खेल उत्कृष्टता, एकता और खेल भावना का एक अनुपम उदाहरण है। फुटबॉल लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है। खेल भावना का महत्व केवल खेलों तक सीमित नहीं है, ये एक महत्वपूर्ण जीवन मूल्य है जो हमें समानता, सहयोग और विपरीत परिस्थितियों में भी दृढ़ बने रहने की सीख देता है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत आज 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि यह अभियान दिल्ली के पर्यावरण को बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। श्री शाह ने कहा कि रिज के लगभग 5000 हेक्टेयर क्षेत्र को अब औपचारिक रूप से वन भूमि घोषित कर दिया गया है।
5: 6300 हेक्टर हरित रिज दिल्ली का फेफड़ा बनकर दिल्ली के पर्यावरण की सुरक्षा करेगी। 1 करोड़ से अधिक देसी पौधे 35 लाख से ज्यादा बड़े बड़े वृक्ष के पौधे और 65 लाख अन्य झाड़ियां, बांस और औषधीय रोपे लगाने का काम होगा।
1: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि 14 किलोमीटर लंबी जोजीला सुरंग, जम्मू श्रीनगर कॉरिडोर पर 36 सुरंगें, केदारनाथ रोपवे और कश्मीर से कन्याकुमारी तक बेहतर सड़क संपर्क जैसी प्रमुख परियोजनाएं कनेक्टिविटी को मजबूत कर रही हैं और देश के विकास को गति दे रही हैं। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय विकास के लिए ज्ञान, नवाचार और साक्ष्य आधारित नीति निर्माण के केंद्र के रूप में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को मजबूत करने के लिए एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। भुवनेश्वर में आज 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए जनजातीय मामलों के मंत्री जुएल ओराम ने जनजातीय विरासत को संरक्षित करने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी ज्ञान को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ एकीकृत करने का आह्वान किया।
6: जनजाति समूहों का सामूहिक विकास ये नरेंद्र मोदी सरकार का लक्ष्य है। इसके कारण बहुत सारे बंधन केंद्र और उसके साथ साथ बहुत सारे रिसर्च कार्यक्रम हम कर रहे हैं और उसका क्रम में आज TRI ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका देश भर का 29 जगह से आके यहाँ योगदान दिया है और उनका काम आगे बढ़ रहा है। मेरा ख्याल से ये बहुत बढ़िया मैसेज होगा और जनजाति के लिए लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में बढ़ती राजनीतिक उथल पुथल के बीच जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान सरकार को चेतावनी देते हुए 48 घंटे का समय दिया है। कमेटी ने कहा है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। हजारों लोग कथित नाकाबंदी को समाप्त करने, संचार सेवाओं की बहाली, भोजन और दवाओं की निर्बाध आपूर्ति, गिरफ्तार नेताओं की रिहाई और 38 सूत्री लिखित समझौते के कार्यान्वयन की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए। पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद रोधी अधिनियम के तहत ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगाने के बाद से प्रदर्शन और तेज हो गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो करते हैं। ये आकाशवाणी है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून अगले 3 दिनों में उत्तरी अरब सागर, गुजरात, हरियाणा, पंजाब तथा राजस्थान में और आगे बढ़ेगा। तटीय कर्नाटक, गुजरात, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, ओडिशा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में भी मध्यम से तेज वर्षा की संभावना है। महाराष्ट्र में मौसम विभाग ने कई जिलों, विशेष रूप से पालघर, ठाणे और पुणे तथा नासिक में बारिश के लिए चेतावनी जारी की है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
7: पुणे जिले के घाट क्षेत्र, लोनावला, माहौल, तामिनी और भोर में लगातार तेज बारिश जारी है, जिससे नदियों और नाले उफान पर है। भूस्खलन और अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने पर्यटकों से झरनों और पहाड़ों इलाकों में जाने से बचने की अपील की है। इस बीच मुंबई और पुणे के बीच सड़क संपर्क बहाल कर दिया गया है। नासिक के घाट क्षेत्र, जिनमें इगतपुरी और त्र्यंबकेश्वर शामिल है, में भी अत्यधिक भारी बारिश दर्ज की गई है। मुंबई महानगर क्षेत्र में बारिश की तीव्रता में कुछ कमी आई है, हालांकि ठाणे और पालघर जिले के कुछ हिस्सों में अब भी भारी बारिश जारी है। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: उधर गुजरात में भी कई जगहों, खासकर सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात क्षेत्र में लगातार हो रही तेज वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में बेल्जियम ने अमेरिका को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। अटलांटा में आज रात राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मुकाबले में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। घरेलू शेयर बाजार दोपहर के सत्र के दौरान सपाट कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स 46 अंक बढ़कर 78,331 पर, जबकि निफ्टी भी लगभग 10 अंक बढ़कर 24,440 पर पहुंच गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण खनिजों, तकनीकी, कृषि और समुद्री सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में समझौतों, ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री मोदी को जकार्ता में इंडोनेशिया के सर्वोच्च सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित किया गया। गुजरात उच्च न्यायालय ने वर्ष 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में 38 दोषियों की मौत और 11 की आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी इम्फाल का कंगला चैनल है। मीडियम वेव 340.1 मीटर अर्थात 882 किलो हर्ट्ज पर फौजी दोस्तों के लिए प्रसारित दैनिक कार्यक्रम अब आरंभ होता है।

दोस्तों, आज कार्यक्रम में पेश है महफिल और आज आप सुनेंगे चंद गज़लें। तो सुना जाए ये पहला गैर फिल्मी गीत वादा एल्बम से रूप कुमार राठौर की आवाज़ में।

दोस्तों, अगली गज़ल है जगजीत सिंह की आवाज़ में और एल्बम का नाम है दुनिया जिसे कहते हैं। शब्द रचना इब्ने इंशा की और संगीत दिया जगजीत सिंह ने।

अगली गज़ल आप सुनेंगे दोराहा फिल्म से मेहदी हसन की आवाज़ में, मसरूर अनवर की शब्द रचना को संगीत दिया सुहेल राणा ने।

अगली गज़ल है फिल्म तुम बिन टू से रेखा भारद्वाज और जगजीत सिंह की आवाज़ों में। फैज़ अनवर की मूल गज़ल पर आधारित शकील आज़मी ने शब्द रचना की है और संगीत दिया निखिल विनय ने।

फौज की थोरम तबीरे तबीरी बासी आकाशवाणी इम्फाल की कंगला चैनल ने चैनल हजिक लाथुकचरी चिंगलोन की सैरोल थोरम अहानब नई हई कंगबू की पुरुम मतम इसाई।

आकाशवाणी इंफाल चौतले छु अद्दाय सिंह हृदय तकुरे पुमाई शोजवा सुदर सुलई कई पिछु हाई मीडियम वेव मीटर कैसा रदाई पॉइंट अली अला किलोहर्ट्ज कैचा रायचा हाहिनुए रायनु जुविको कैलुलाई सम शोही पीके लुसी अला पुवी मेनु सुजुलु क्वा कैजुलुलाई आकाशवाणी इंफाल जुविको हाई जी पुनी निचोपिलाई ऑल इंडिया रेडियो मे श्री नोंमाइथेम नंद कुमार सथे साजो सेक्रेटरियट हिनु वे चीफ मिनिस्टर युमनाम खेमचानी दवे ए जिरीबमी ऑल इंडिया रेडियो ट्रांसमिशन इंस्टॉलेशन सुलावे प्रोजेक्ट वनु वे चिपाय गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर न्यू मैसूर दो न्यू ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेस हाय सुखवा तैल मचाहिनु दई कदोशुआ बुजु अला दई रही बुजु माइ दवे पान्यू तैले तैले ही इंफॉर्मेशन अला को मत्सजु तवाय सुलोलाई दोन्यू कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर हाय सुलाई चीफ मिनिस्टर न्यू कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सी ए एफ एंड पी डी डिपार्टमेंट ने साजो कैबिनेट हॉल सेक्रेटरियट ही न्यू सर्विस डिलीवरी विशोज हाय सुखुलाई दोन्यू चिपाई डिपार्टमेंट न्यू टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम टी पी डी एस अला नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट NFSA hai panu food security ala consumer rights hai paya moloshiju tosho petroleum products LPG ta hai jibilai donu vasoni boy kangpokpi district ve new kaithel mambi police station khi buju paringba khunthak ve vaushe hinu po makanga new sharu paju putumai alive athipawai ngoloi अथिपाउहाय रिम्स मोर्चुअरी ही बोए अनु दोशोकोटे हिनु अथिपाउहाय चिहिनली खिमाइनु वे पोमोराई चेलुज लीगल प्रोसीजर थेफिया अखाइशो जहाय सुलाई थ्या पंगोवे चीफ मिनिस्टर न्यू IMC इंफाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कॉर्पोरेटर्स सीनियर ऑफिशियल अला टेक्निकल एक्सपर्ट ताउसा अमृत मित्र हाय इम्प्लीमेंट सुलाई दोन्यू चिपाय शो जहाय Women led urban governance ala water management hai SHG sasa women self help group nu sutesa sulai DIPR Directorate of Information and Public Relations Manipur ala PHED Public Health Engineering Department kwa shows ali josue sahi department nu urban rural hi water supply scheme सीवेज प्रोजेक्ट अला स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण हाई स्टेट ही वासुतादाय दोनों सोवे सही डिपार्टमेंट वे एडिशनल चीफ इंजीनियर PHED दुरेंद्र राजकुमार TH बेबीना देवी सुपरिंटेंडेंट इंजीनियरिंग PHED एल आईरी सिंह सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर PHED अला TH पिका सिंह एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PHED पुले तो तावेलो जांगो जोवे Prime Minister Narendra Modi ni jyotite Indonesia President Prabowo Subianto ye Jakarta hin dawa chiphalai External Affairs Minister S Jayshankar nu Bahrain ve mave Hamad bin Isa I Khalifa ye dawa fete de a highway teja dehi suve sudukeju ala kwa chavya shulai donu chiphalai तई ऋषि शोलाइटिया महाराष्ट्र वे भूतावली रेड अलर्ट है पुयाबोई सवानु स्कूल्स अल्या कॉलेजेस तावली है जो क्यूरे NDRF अल्या SDRF मेनु सुदानु बुए एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट नु उत्तर प्रदेश वेस्ट बंगाल मिजोरम अल्या असम स्टेट है तो ही फौता बोए सस म्यांमार ही नु चिखा फे खुआनु पान सुपारी थे है इंडिया ही फेलोए तिजु स्लोवानु फौपानी बोए FIFA World Cup hi Spain and Portugal le goal ali te thulwani sukhawre ala quarter final hi khelore Portugal superstar Cristiano Ronaldo hai FIFA World Cup hi puja dakhai kole more tishu paupani bui Belgium new United States e FIFA World Cup ve round 16 hi sukhawre a quarter final hi Belgium ala Spain new Friday ju

0: आकाश पानी इम्फाल हौजिक लांथोक चरी रेडियो लीला अखोगी इवोक लीला सिगी अरोब स्वरूप लीला सानविगदा सलाई सक्तम लांग कांगलोफ के लीला कांगबू
1: सुरेन मखोई तातोल हलकलगा वाफम से सोइदन हौदोकजगे मागिदि सिनबु हेना फैयायरकदब माली ताई
2: इमालाई इमालाई को
1: ओइसे
3: ngasidi imau ani na punna leramli basi bu khari khanaramli banone
4: ima hala pangaramli bane
3: ha ai hala pangaramli ba pharza ima sune ngasi no mani ni ase na khoi da wa ma tang hautoki haidana khanduna leiri bani ne atomadi hala khrabra
1: hala trima
4: ima na haningi bana karino
3: ima gi asoba leikhidra ba na pagi ningsing kumola se फैरें की मरी निपानबद थोए हंदक्तिने मी यामदन खरादंग ओइरबसु इमाना कनिंगिन हे
4: मा दु पैसा यौद्रति यारुइनिमा
3: हे मी याम गदबसु नते नपागति नजरंबा अहन मंगा तरादंग सेवा फंगबसिबु नखोइसुंगम फम थोइना
1: मथंग थादि इबुंगो गे सेल थागदबसु लै सीदसु नति आ इमा गे सिनिंगा लैरबदि खंग्रेको
3: ꯑꯩꯒꯤꯗꯤ ꯀꯗꯥꯏꯗꯒꯤ ꯁꯦꯜ ꯂꯩꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯏꯃꯥꯗꯤ ꯏꯆꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯏꯃꯧꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟ ꯇꯥꯡꯂꯒ ꯍꯤꯡꯂꯤꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤꯅꯤꯅ ꯍꯦ
1: ꯑꯩꯗꯤ ꯏꯃꯥꯒꯤ ꯇꯨꯡꯁꯤꯟꯖꯕ ꯁꯦꯜ ꯂꯩꯔꯝꯒꯗꯕ ꯃꯥꯜꯂꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯅꯤ ꯏꯅꯥꯎ
5: ꯃꯥꯅꯤꯁꯦ ꯍꯟꯗꯛꯇꯁꯨ ꯊꯥꯡꯃꯩꯕꯟ ꯏꯅꯦꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯨꯍꯣꯡꯕꯒꯤ ꯄꯣꯌꯦꯡ ꯏꯃꯥꯕꯨ ꯄꯤꯔꯨꯗꯥꯏꯅꯦ
3: ꯑꯉꯥꯎꯕꯤ ꯏꯃꯥꯅ ꯄꯥꯡꯂꯨꯔꯤꯕꯗꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯠꯇꯦꯅꯦ ꯍꯧꯔꯛꯂꯤꯕ ꯏꯁꯨꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯈꯜꯂꯒ ꯄꯥꯡꯂꯨꯔꯤꯕꯅꯤꯅꯦ ꯃꯗꯨꯒꯤꯁꯨ ꯃꯊꯛꯇ ꯅꯅꯦ ꯑꯗꯣ ꯂꯥꯏꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯕ ꯅꯄꯥꯕꯨꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯤ ꯑꯃꯠꯇ ꯉꯥꯏꯔꯕ ꯃꯁꯟꯅꯤꯅꯦ
5: ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯦꯗ ꯏꯃꯥ ꯁꯦꯟ ꯊꯨꯝ ꯋꯥꯔꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯃꯤꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯈꯥꯡꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯍꯩ ꯐꯪꯒꯗꯕ ꯃꯥꯟꯗꯦ
3: ꯊꯤꯗ ꯃꯁꯤꯅ ꯍꯦꯛ ꯉꯥꯡꯕꯁꯤꯃ ꯍꯩ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯏꯄꯨꯔꯣꯏꯕꯗꯣ ꯅꯪ ꯅꯪꯒꯤ ꯅꯨꯄꯥꯕꯨ ꯄꯣꯛꯂꯝꯂꯤꯕ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯁꯥꯗ ꯍꯤꯡꯂꯝꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤꯅꯦ ꯍꯦ
5: ꯅꯣꯏ

तरुक छुबा पोस्टकार्ड लौखचरी थाबीरकली मरुप सिंगना खुराई कुंसम लैकाईदगी सुषमा नावरेम मैरावा लैचोंबम खनबीरकली फिल्म काउरगे सैसकपा रणबीर ठौना मरुप सिंगी शै खुदोल तमजरी

दो रास्ते फिल्म के इस गीत के साथ ही हमारी भी मुलाकात शुरू हो गई है। समय हो चुका है 10:36 और 38 सेकंड और आप हमेशा की तरह जुड़े हुए हैं 100.1 MHz पर आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल के साथ, जहां मैं अभिनीत शुक्ला लेकर आ गया हूं प्यार भरे गीतों का ये गुलदस्ता, नाम है जिसका हर सिंगार। स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। ये गीत था रफी साहब और स्वर कोकिला लता मंगेशकर की आवाज में, जिसे लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। और अगला गाना 1960 में आई फिल्म रंगीला राजा से सुधा मल्होत्रा और तलत महमूद का गाया हुआ, असद भोपाली की शब्द रचना और शिवराम कृष्ण का संगीत।

मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, गमे दुनिया से फुर्सत हो गई है। जलील इलाहाबादी की लिखी पंक्तियों जैसा ही प्रेम भाव प्रेम धवन के बोल से सजे इस गीत में भी था, जिसे गाया महेंद्र कपूर और सुमन कल्याणपुर ने और इसे संगीत से सजाया एस एन त्रिपाठी ने। फिल्म का नाम जिंगारो। अगला गीत होगा फिल्म परख से, जिसके गीतकार और संगीतकार दोनों ही रहे रविन्द्र जैन, और इसमें आवाज आप सुनेंगे किशोर कुमार और हेमलता की।

फिल्म अपना भी कोई होता से सुलक्षणा पंडित और सुरेश वाडकर की आवाज में एसएच बिहारी का लेखा और चित्रगुप्त के संगीत में पिरोए इस गीत के साथ ही हर सिंगार के आज के सफर में हम बहुत आगे आ गए हैं। लेकिन इसके समाप्त होने से पहले मंजिल फिल्म से मन्ना डे और आशा भोसले का गाया ये गीत बोल मजरू सुल्तानपुरी के और संगीतकार एसडी बर्मन।

हम और आप और एफएम गोल्ड यूं ही मिलकर चलते रहेंगे, लेकिन आज की हर श्रृंगार की यात्रा बस यहीं तक थी। हाँ, आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए, सुनते रहिए एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल। आगे सुनिए समाचार और मार्केट मंत्रा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है।
1: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूँ। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
0: जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एकतरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोबो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान वेंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज बहरीन के उप प्रधानमंत्री खालिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि मुलाकात के दौरान दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। कामराज पोर्ट 18 मीटर ड्राफ्ट क्षमता वाला देश का दूसरा प्रमुख बंदरगाह बन गया है। बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने कहा कि उपलब्धि आधुनिक और भविष्य के लिए तैयार समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर है जो भारत की आर्थिक वृद्धि और वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देगा। श्री सोनोवाल ने कहा कि मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 और मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 के विजन से प्रेरित होकर देश विश्व स्तरीय बंदरगाह बना रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय राजधानी में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का शुभारंभ किया। श्री शाह ने कहा कि अभियान दिल्ली के पर्यावरण को बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। गृहमंत्री ने कहा कि सरकार यमुना नदी को साफ करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। गृहमंत्री ने 300 इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ किया और 3 नवनिर्मित बस डिपो तथा 40 वाहन परीक्षण केंद्रों का वर्चुअल उद्घाटन किया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल है जिससे देश को आर्थिक और पर्यावरणीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण लाभ मिले हैं। नई दिल्ली में विकसित भारत सम्मेलन में श्री गडकरी ने ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए वैकल्पिक जैव ईंधनों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया। फीफा विश्व कप में अटलांटा में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और मिस्र के बीच राउंड ऑफ 16 का मैच चल रहा है। फिलहाल मिस्र 2-0 से आगे है। इसके बाद राउंड ऑफ 16 के एक और मुकाबले में वैंकूवर में स्विट्जरलैंड का सामना कोलंबिया से होगा। राउंड ऑफ 16 के एक और मुकाबले में बेल्जियम ने सिएटल में अमेरिका को 4-1 से हराकर टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज में भारत ने इंग्लैंड के साथ तीसरे T20 क्रिकेट मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 12 ओवर में 3 विकेट पर 111 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Nikhil Kumar.
1: नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में कारोबारी खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर हैं। आज के अंक में हम बात करेंगे आर्थिक गतिविधियों की और शेयर बाजार पर चर्चा भी करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ खास मेहमान हैं आर्थिक विश्लेषक सुषमा रामचंद्रन। सुषमा जी, कार्यक्रम में आपको बहुत बहुत स्वागत है।
2: थैंक यू।
1: और सबसे पहले सुनते हैं अर्जुन से हेडलाइंस।
0: Benchmark domestic stock market indices decline, Sensex drops over 100 points, Nifty settles below 24,400. Most Asian stock market indices end in the negative territory, and India and Indonesia exchange MOUs in areas including critical minerals, defense and emerging technologies.
1: घरेलू शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स 100 से अधिक अंक लुढ़का, निफ्टी 24,400 से नीचे बंद हुआ। एशिया के प्रमुख शेयर सूचकांकों में गिरावट देखी गई और भारत तथा इंडोनेशिया ने रक्षा, महत्वपूर्ण खनिज और उभरती प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए।
0: And before we take our main stories in detail, here is a disclaimer. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: Desh ke pramukh शेयर सूचकांक आज अपनी शुरुआती बढ़त को बरकरार नहीं रख सके और कारोबार के अंत में लाल निशान के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 104 अंक गिरकर 78,181 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 32 अंक लुढ़क कर 24,399 पर आ गया। दोनों सूचकांकों में 0.1% की गिरावट आई। विस्तृत शेयर बाजार भी नुकसान के साथ बंद हुए। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के मिड कैप सूचकांक में 0.3% की सुस्ती देखी गई और स्मॉल कैप सूचकांक में 0.5% से अधिक की गिरावट आई। बाजार आज अच्छी शुरुआत के साथ खुले थे और सत्र के अधिकांश समय बढ़त के साथ कारोबार करते रहे, लेकिन कारोबार के अंतिम घंटे में मुनाफा वसूली और वैश्विक स्तर पर कमजोर संकेत मिलने से नुकसान देखा गया।
0: Benchmark domestic equity indices gave up the initial gains and ended on a negative note today. Sensex dropped by 104 points to close at 78,181. Nifty dipped by 32 points to settle at 24,399. Both the stock market indices dropped 0.13%. In the broader market on the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index fell 0.3%, while the small-cap 100 index lost more than 0.5%. Earlier, the markets opened on a positive note and traded with gains for most of the session. However, both the stock market indices lost momentum in the final hour of trade, weighed down by profit booking and weak global cues.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 16 कंपनियों के शेयरों में गिरावट आई। सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयरों में ट्रेंड सर्वाधिक 12.4% के नुकसान में रहा। वहीं अडानी पोर्ट्स में 1.6% और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में 1.5% से अधिक की गिरावट आई। उधर अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनी के शेयरों में HCL टेक ने 3.1%, टेक महिंद्रा और इन्फोसिस 2.8% तथा टाइटन ने 2.6% से अधिक का उछाल दर्ज किया।
0: In the sectoral indices on the Bombay Stock Exchange, 20 out of the 25 sectors ended in negative zone. Among the key laggards, capital goods shed over 1.7%, realty fell 1.6% and industrials lost 1.5%. In contrast, focused IT jumped more than 2.2%, IT rose 2.1% and consumer durables added over 0.6%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was negative, as shares of 2,633 companies declined, 1,599 companies advanced and 165 companies remain unchanged.
1: अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 44 पैसे मजबूत होकर ₹94.96 पर बंद हुआ। उधर दुनिया की 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं के तुलना में अमरीकी डॉलर की मजबूती को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक अंतर दिवसीय कारोबार में 100.87 पर कारोबार कर रहा था। सुषमा जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज बाजार की शुरुआत अच्छी बढ़त के साथ हुई थी, लेकिन आखिरी के घंटे में बिकवाली देखने को मिली, तो आपकी नजर में इस बदलाव की सबसे बड़ी वजह क्या रही, मुनाफा वसूली या वैश्विक स्तर पर जो संकेत मिले उन पर? कहेंगे?
2: देखिए, ज़्यादातर मैं समझती हूँ कि अभी चार दिन से बुलिश रन चल रहा है हमारी स्टॉक मार्केट्स में, और ये वजह ये रही है कि जो जो अंतर्राष्ट्रीय के जो अंतर्राष्ट्रीय हालात जो हैं वो अच्छे हो गए हैं. थोड़े से कम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स खुल गया है, तेल आना शुरू कर दिया है, और जो सरकार ने जो कर्ब्स लगाए थे लिक्विड नेचुरल गैस के ऊपर और LPG के ऊपर, वो उन्होंने हटा दिए हैं. मतलब है कि तेल और गैस जो है वो आराम से आ रहा है. तो ये जो मतलब अच्छी स्थिति है वो दर्शा रहा था स्टॉक मार्केट्स में. आज मेरे ख्याल में प्रॉफिट बुकिंग ज़्यादातर इस वजह ये है कि एकदम से मार्केट थोड़ा सा गिर गया है. लेकिन आउटलुक क्योंकि अभी भी अच्छा है, और जैसे आपने खुद ही कहा कि जो ये प्रॉफिट बुकिंग एंड में इसका has brought down the market.
0: Sushma, while there was profit booking in the last hour of trade on the Sensex and Nifty, we saw short covering in the tech sector, which has really taken a beating in terms of valuation.
2: Yes.
0: And we are seeing that AI, artificial intelligence, is a major component. It's a major tool in the performance of global companies worldwide right now. So where do you see IT companies right now? Do you see this trend continuing, or valuations going up, or is it just value buying right now?
2: I think valuations should go up in the long term, because you know this dip that has happened in recent times is largely because of perception. Perception being that, you know, in India, we don't have large language models. We are not, you know, big AI players. And therefore, our IT companies will not be able to cope in the new scenario, you know, the kind of services exports that they have been doing, the kind of contracts that they've been getting. But in fact, that's as I said, that's a perception. And the fact is that these same IT companies have been able to, or will be able to rather, utilize the, let's say, the fallout of the availability of these LLMs. Everywhere you do have, I mean, it would be wonderful if India had LLMs, but we don't. But we are very good at application. And that's where the IT companies are going to come in. They are going to provide IT services. And in fact, actually, it's surprising, during this period when share values had gone down, actually the IT companies had been doing very well financially because of rupee depreciation. With rupee depreciation, there's exports, you know, they are responsible for the services exports of the country. And therefore, the profitability of these companies has been rising exponentially.
0: Speaking about the rupee depreciation earlier, which IT companies have traditionally exploited because their earnings are in the foreign exchange, in the US dollar. Today, the rupee appreciated by 44 paise. We know that all the currencies have taken a beating against the US dollar.
2: Yeah.
0: The US dollar index is above 100. It's 100.87. Was there any kind of intervention by the central bank in the valuation of the rupee versus the dollar, or is it just demand and supply? Because even if you look at the equity markets right now, the FIIs, FPIs were net buyers to the tune of only 393 crore rupees, and DIIs were the net sellers of 383 crore rupees. So was there central bank intervention today?
2: No, well, of course, you know, we really don't know whether there is central bank intervention. But the central bank has been intervening, but it has been intervening cautiously. If it had been intervening in a major way, we would not have had this relentless devaluation or depreciation of the rupee. But I think where the central bank has played a role has been to ensure that there is not a precipitous fall of the rupee. Because as most observers have been saying, that it is perfectly fine for the rupee to depreciate, to come down to the level that is accepted, you know, by the financial markets, and you know, there's really no harm. And of course, we just talked about the fact that, you know, exports, IT exporters are benefiting from it, and other merchandise exporters also. So that is fine now, but the central bank, therefore, has allowed this depreciation to take place and has not made any major interventions. But certainly, as I said, it has slowed down the pace. Right now, I don't think that they are trying to push to ensure that there is rupee appreciation. I think that is something that is happening. Naturally, it's one of the factors, because one of the factors is definitely the fact that, you know, oil prices have come down. It's quite a relief to the Indian economy, to the government, obviously, that they have come down to pre-war levels.
1: सुषमा, अगर मार्केट को थोड़ा सा फिर से एक बार देखें तो आज कैपिटल गुड्स की बात करें, रियलिटी की बात करें, इंडस्ट्रियल सेक्टर में बहुत गिरावट हमें देखने को नजर आई है। तो क्या ये अभी हाल फिलहाल की से कमजोरी मान सकते हैं या फिर आगे भी इन सेक्टर्स में ऐसे ही दबाव बने रहने की आशंका आपको लगती है?
2: देखिए, कुछ सेक्टर्स में दबाव तो बनेगा। अब रियल्टी सेक्टर एक है जिसके बारे आपने बात की, और कैपिटल गुड्स है। खैर, ये तो पोटेंशियली पॉजिटिव सेक्टर्स है, और रियल्टी सेक्टर का रिवाइवल अभी हाल ही में हुआ है, तो मेरे ख्याल में ये शॉर्ट टर्म वीकनेस होगा और आगे वाले दिनों में शायद ये ठीक हो जाएगा।
0: Sushma, you mentioned about global cues, oil market being one of them, the Strait of Hormuz opening up, and clearly that 60-day window is vital for the flow of oil and gas and even other goods like sulfur for the manufacture of fertilizer. What about steel? Because right now, experts are giving the opinion, like yourself, that there's going to be a glut, a surplus of steel, which is why the prices of steel and steel products will come down. Nifty Metal actually fell by 1.1% today. What are the surprise areas we're likely to see in the markets now?
2: As far as steel is concerned, there may be a glut of steel per se, but India needs certain specialized varieties of steel, which actually it is not manufacturing right now, and therefore it is having to import these. And these are the steels that are required for moving into the area of electric batteries and electrification, which we are seeking to do in terms of renewable energy. So there are, you may get steel. There are steels and steels. So specialized steels is something that India needs to probably right now import and probably to manufacture ultimately, because that's an area where people are now talking about as being somewhat a weakness in our economy, and we have to look at ramp up manufacturing here.
0: Along with that, there is also moves to substitute copper with aluminium, because aluminium is lighter, and the design of manufactured components, especially in the EV space, is being looked at very seriously. That is another way of bringing down the price of copper, which has actually gone up, because yes, aluminium is still fairly affordable right now. So do you see a lot of changes right now in terms of valuation in the metal sector?
2: Yes, definitely. I mean, metals is going to be a very, very important sector. I mean, you talked about copper, aluminum, you know, all the metals right now in recent times, the prices have gone up because the requirement of all these metals in high-tech products, in components, whether it is, you know, it may be silicon chips, you may need very tiny quantities of these metals, but these are required. And of course, copper prices have gone up. So yes, there would be efforts to try and seek alternatives, like in the case of aluminum. Aluminum is an area that India has sufficient production, and that would be certainly helpful if we can do that, if we can replace copper with aluminum in a lot of manufacturing areas.
1: सुषमा, आज मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर्स में भी गिरावट का रुख हमें देखने को मिला है, तो इस स्थिति में जहां पर हम ये देख रहे हैं कि मार्केट में एक थोड़ा सा डिफरेंट ट्रेंड हमें देखने को मिला है, तो ऐसे में निवेशकों को क्या ध्यान रखना चाहिए इन चीजों पर?
2: देखिए, निवेशकों को ये देखना चाहिए, ये सिर्फ मिड कैप और स्मॉल कैप में भी नहीं, पर खैर मिड कैप और स्मॉल कैप में ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये ब्लू चिप शेयर्स नहीं है, ब्लू चिप कंपनीज नहीं है। इनमें उनको आगे की लॉन्ग टर्म पोटेंशियल जो है कि जिस इंडस्ट्री में है वो देखना है, और ये जो जो स्टॉक जो आपने चुना है इसका इनकी जो मार्केट है वो कैसी है, और प्राइस अर्निंग रेशियो, ये जो चीज़ें हैं थोड़ी सी डिटेल में उनको देखना चाहिए और लॉन्ग टर्म इसका पर्सपेक्टिव होना चाहिए. अगर आप खैर डे ट्रेडिंग कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन अगर आप रेगुलर रिटेल इन्वेस्टर हैं तो आपको मेरे ख्याल लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देख कर ही एक कंपनी चुननी चाहिए.
1: एक सही समय है ये. सही समय है ये.
2: देखिए हर समय सही है. इस वक्त तो मैं समझती हूँ कि इंडिया मार्केट मार्केट लगता है कि अभी बढ़ने वाला है. सारे एनालिस्ट यही कहते हैं. तो ये पोटेंशियल हमारी मार्केट का बहुत ज़्यादा है. असेसमेंट यही चल रही है इस वक्त.
1: और एशियाई बाजारों की हम बात करें तो प्रमुख एशियाई शेयर सूचकांकों में आज गिरावट देखी गई. दक्षिण कोरिया का कोस्पी 4.9% नीचे आ गया, जिसमें चिप शेयरों में बड़ी गिरावट आई. कारोबार के पहले सत्र में कोस्पी 8% से अधिक गिर चुका था. ताइवान का ताइएक्स आज 2.3% लुढ़क गया. वहीं जापान का निक्केई 2.1% और चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक 1.2% गिर गया. हांगकांग का हैंगसेंग भी 0.5% नीचे आ गया. सिंगापुर के स्ट्रीट्स टाइम सूचकांक ने 1.6% की बढ़त दर्ज की. सुषमा जी, आज दक्षिण कोरिया कॉस्पी में जो गिरावट देखी गई, एक बड़ा संकेत इसे माना जा रहा है अन्य मार्केट्स के लिए, तो आपको क्या लगता है कि इस गिरावट का असर थोड़ा लंबा जाएगा या बस हाल फिलहाल के लिए कह सकते हैं इसे ये है?
2: तो ये वो मुश्किल कहना है कि वो लंबा जाएगा कि नहीं, पर मेरे ख्याल में ये जो इस वक्त AI की जो सारी की जो समझ लीजिए कंफ्यूजन जो है AI के ऊपर, और AI खैर चिप्स उनके साथ AI के साथ बहुत लिंक्ड है. AI और चिप्स इकट्ठा ही जाता है. तो और साउथ कोरिया जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट क्रिटिकल सेंटर है चिप मैन्युफैक्चर के लिए, साउथ कोरिया और ताइवान. तो हमें ये मेरे ख्याल में ये लंबा तो मुझे नहीं लगता जाएगा, क्योंकि ये इस वक्त का जो कंफ्यूजन है वो जब ठीक हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका में खैर AI स्टॉक्स तो इतने बड़े हुए हैं, लेकिन अभी जो कंफ्यूजन मैं बात कर रही हूँ चाइना और US के बीच में जो ट्रेड इश्यूज अभी भी सुलझाई नहीं गई हैं, अभी भी वो प्रॉब्लम्स हैं कि कौन से चिप्स अमेरिका जाने देगा चाइना तक, और चाइना अपने कर्ब्स अभी भी उन्होंने लगाए हुए हैं. तो ये टेंशन्स अभी चल रही हैं, और ये मेरे ख्याल ये दीज आर सॉर्ट ऑफ एक्सटेंडिंग टू अदर कंट्रीज.
0: एट साउथ कोरियाज कोरिया एक्सचेंज द कॉस्पी दैट माय कोएंकर हैज आस्क्ड यू अबाउट इट प्लंज्ड 4.9% एंड दिस इज अ वेरी market where Samsung second quarter earnings have the revenue has exceeded Nvidia's 171 trillion US dollars is the revenue of Samsung in its second quarter. Its net profit has gone up by 19x. How does this happen in a market like Korea, developed country, where there is such a sharp correction?
2: But I don't think we should. We must remember that all markets are susceptible to these kind of things, because if there's any bad news, all markets like the Indian market are sentiment driven, and South Korea is no exception. So if there was some kind of perception that there would be some damage to the chip industry, to the chip sector, the problems that they are facing, which I talked about, both Korea, Taiwan, US and China, all this confusion that is going on and the problems that they are facing. So these are perceptions, and markets are generally sentiment driven. So yes, this can happen. And of course, Samsung, the profitability that you're talking about is really amazing, even better than Nvidia. For us, Samsung and companies like LG, the way they have entered the Indian markets is also so amazing that we sort of, the Indian consumer more or less thinks of Samsung and LG as Indian companies. They don't think of them as Korean companies. So this is the achievement of the Korean conglomerates. And definitely, as you say, profitability levels are amazing. But every market is sentiment driven, and these things happen everywhere.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने आज जकार्ता में हुई वार्ता के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई. दोनों नेताओं की उपस्थिति में कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए, जिनमें रक्षा, महत्वपूर्ण खनिज, कृषि, इस्पात और उभरती प्रौद्योगिकी शामिल हैं। संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों पक्षों ने महत्वपूर्ण खनिज और इस्पात के क्षेत्र में आपूर्ति श्रृंखला को सशक्त बनाने के उद्देश्य से सहमति व्यक्त की है।
3: आज के युग में टेक्नोलॉजी की सप्लाई चेन रेजिलियंस बहुत मायने रखती है। क्रिटिकल मिनरल्स और स्टील के क्षेत्र में सप्लाई चेन को अधिक मजबूती देने के लिए भी अहम समझौता हुआ है। हमारी कंपनीज के बीच स्टेनलेस स्टील और रेयर अर्थ मैग्नेट को लेकर साझेदारी की नई शुरुआत हो रही है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की यूपीआई भुगतान प्रणाली बहुत ही जल्द इंडोनेशिया के पेमेंट सिस्टम से एकीकृत हो जाएगी। इससे कारोबार करना आसान होगा और यात्रा करने में भी सुविधा होगी। सुषमा, ये इस यात्रा से जुड़े मेरे दो सवाल है। पहला तो ये, प्रधानमंत्री की इस यात्रा से आर्थिक दृष्टि से भारत को किस तरह से लाभ मिलने वाला? दूसरा, यूपीआई जो हमारी भुगतान प्रणाली लगातार अपना दायरा बढ़ाती जा रही है, बहुत से देशों के साथ हमारा एक टाई अप हो चुका है इसे लेकर के, अब इसका आप भविष्य कैसे देखते हैं?
2: देखिए, जो पहला सवाल है कि इसमें जो आर्थिक इसके जो इकोनॉमिक टाई अप जो है इंडोनेशिया के साथ, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। एक क्रिटिकल मिनरल्स है, कृषि है, स्टील है और नई टेक्नोलॉजीज हैं, ये सारी इसमें आती है। और सबसे बड़ी चीज़ डिफेंस की भी बात कर रहे हैं वहाँ पर। तो इंडोनेशिया के साथ हमारे खैर बहुत पुराने रिलेशंस हैं और बहुत लंबे अरसे से इंडोनेशिया के साथ हैं। और आगे की सबसे बड़ी चीज़ जो आपने दूसरा सवाल था, यूपीआई था, अगर हम यूपीआई के इंटरफेस के साथ हम इंडोनेशिया की पेमेंट सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करते हैं तो एक और देश हमारी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में इंटीग्रेट हो जाएगा। यूएई का खैर है ही है, मलेशिया के साथ हो गया है और मेरे ख्याल सिंगापुर के साथ भी बातचीत हो रही है, लेकिन यूएई में मेरे ख्याल आप वहाँ जाके यूपीआई इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं। हमारा जो इंडिया स्टैक है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिकग्नाइज हो रहा है और इस्तेमाल हो रहा है।
0: Local currency transactions, LCT, de-dollarization moves?
2: Yes, they are de-dollarization moves, certainly, because the more we try and utilize UPI, the more we try and use our own currencies, the less we have to rely on the dollar and the less we suffer the fluctuations of the dollar.
0: In more news, the Emergency Credit Line Guarantee Scheme, ECLGS 5.0, launched in May this year, has crossed more than 4 lakh guarantees, with the guaranteed amount reaching over 1,55,000 crore rupees. MSMEs have emerged as the biggest beneficiaries of the scheme, with 98% of the guarantees issued going to the sector, while 82% of the total guaranteed amount has also been extended to MSMEs. The Finance Ministry said that the scheme is delivering fast, large-scale liquidity support to businesses affected by the West Asia geopolitical situation. And let's now move on to the crude oil market. Global crude oil prices rose today as reports of attacks on vessels near the Strait of Hormuz revived fears of supply disruptions. Brent crude was trading nearly 0.9% up at $72.61 per barrel. West Texas Intermediate crude was trading 0.7% up at $69.01 per barrel when reports last came in. The 60-day window, which also includes reparations to Iran and of course the flow of oil and gas and other commodities through the Strait of Hormuz without toll being imposed, how do you see that holding up?
2: Well, we don't really know how well it's going to hold up, but the fact is that crude oil prices have come down. That's the most important thing for India. I mean, we import for 85% of our requirements, and if the prices are coming down to $72 or $73 per barrel, as you know, today you're saying that they have gone up, but they've only gone up to about, you know, it's still less than $73 per barrel. And this is something that is manageable for India. And now the assessment is that going forward for this year, probably the average crude price is expected to be only about $77 per barrel. And next year it would be even less, maybe $74 or $75 per barrel. So the assessment now is that, you know, we have so much of crude oil in the market and demand is going down because people like, you know, countries like China are going in for electrification in such a huge way, their demand is going down. And India also is now going to try very hard. We just talked about electrification of steel. So that is the going to be a problem for the oil industry, but good for India.
0: Let's move on to the bullion market. Now, in the Indian bullion market, 24-carat gold was trading 0.9% down at 1,46,130 rupees per 10 grams, while silver was trading 2.2% down at 2,31,220 rupees per kilogram a short while ago.
1: Multi-commodity exchange mein agast anubandh wala sona 0.8% niche aakar 1,45,798 rupees prati 10 gram par karobar kar raha tha, jabki september anubandh wali chandi 2% ki giravat ke saath 2,31,354 rupees prati kilogram par chal rahi thi. Sushma ji, sone aur chandi par aapke kya comments honge?
2: Dekhiye, ab safe haven ka jo silsila hai, normally it's a safe haven metal gold, और जो अब वॉर का लगता है कि अंत होने वाला है, तो धीरे-धीरे सोने का भी दाम कम हो रहा है.
0: Once again, sanctions against Russia has played a role here. The Ukraine has upped the ante against Russia. Do you see that changing?
2: Well, that's a war, I think, that is just doesn't seem to be going on in a very incremental fashion. And I think, unfortunately for Ukraine, the interest of the world is now focused on Iran.
0: Thank you so much, Sushma Ramchandran, for being with us on Market Mantra today.
2: Thank you.
0: And before we close, a reminder of the headlines. Benchmark domestic stock market indices decline. Sensex drops over 100 points. Nifty settles below 24,400. Most Asian stock market indices end in negative territory. And India and Indonesia exchange MOUs in areas including critical minerals, defense and emerging technologies. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye.
1: नमस्कार.
4: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.

गीत फिल्म के इस गीत में जहां लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी मीत को बुला रहे थे, इसे आपने सुना भी कार्यक्रम गीत मेरे मन मीत के अंतर्गत और 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल में मैं अभिनीत आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में ये गीत।

फिल्म कभी कभी से मुकेश के गाए इस गीत को क्रिकेट प्रेमी भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी से जोड़ के भी देखते हैं, जिन्हें ये काफी पसंद है और उनका आज जन्मदिन भी है। तो 7 जुलाई की तारीख बीतने से पहले हम उन्हें एक बार जन्मदिन की बधाई दे देते हैं और इसके साथ ही गीत मेरे मनमीत का ये सफर आज यहीं समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल। अवनीत शुक्ला को दीजिए आज्ञा, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है।
1: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूं। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
0: जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एकतरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोबो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में

0: सम्मान, बिंतांग आदिपूर्ण ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। विदेश राज्य मंत्री डॉ कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा है कि भारत ऐसे एआई भविष्य के लिए प्रतिबद्ध है जो सुरक्षित, भरोसेमंद और समावेशी हो। उन्होंने जिनेवा में एआई गवर्नेंस पर यूएन ग्लोबल डायलॉग की हाई लेवल प्लेनरी को संबोधित किया। डॉ सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि एआई गवर्नेंस मानव केंद्रित, समावेशी और भरोसे पर आधारित होनी चाहिए। भारत और रवांडा ने सैनिक ट्रेनिंग, संयुक्त सैनिक एक्सरसाइज, मेडिकल सहयोग और रक्षा उद्योग के क्षेत्रों में अपने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को बढ़ाने पर सहमति जताई है। ये निर्णय नई दिल्ली में दो दिनों तक चली दूसरी संयुक्त रक्षा कोऑपरेशन कमेटी की बैठक के दौरान लिया गया। दोनों पक्षों ने सहमत कार्य बिंदुओं के लिए समय सीमा के साथ एक कार्यान्वयन योजना को भी अंतिम रूप दिया। सरकार ने स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया नाम के एक संगठन के झूठे दावों के बारे में लोगों को सावधान किया है। ये संगठन दावा कर रहा है कि उसे युवा मामले और खेल मंत्रालय ने मान्यता मिली हुई है। प्रेस सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक यूनिट ने कहा है कि यह दावा गलत है और साफ किया है कि मंत्रालय ने इस संगठन को कोई मान्यता या संबद्धता नहीं दी है। वायनाड के विपड्डी में कल्लाड़ी के पास सुरंग निर्माण स्थल पर तेज बारिश के बाद हुए भूस्खलन में 3 लोगों की मौत हो गई। जमीन के नीचे फंसे 9 मजदूरों को बचा लिया गया है। 6 अन्य अभी भी लापता हैं और उनके मलबे के नीचे दबे होने की आशंका है। अग्निशमन और आपदा राहत दल बचाव अभियान में लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कल विभिन्न क्षेत्रों पर अल नीनो के संभावित प्रभाव और तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की। ये बैठक प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ पीके मिश्रा की अध्यक्षता में हुई। डॉ मिश्रा ने निर्देश दिया कि समग्र स्थिति की निरंतर निगरानी की जानी चाहिए और संवेदनशील जिलों पर मानसून या विलंबित मानसून के प्रभाव का आकलन राज्यों के समन्वय से किया जाना चाहिए ताकि आवश्यकता पड़ने पर सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, सौराष्ट्र, कच्छ, विदर्भ, राजस्थान और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ भागों में ऐसी स्थिति बने रहने का अनुमान किया है। दक्षिण पश्चिम मानसून गुजरात के शेष भागों और राजस्थान तथा हरियाणा के कुछ और क्षेत्रों में आगे बढ़ गया है। फीफा विश्व कप में अटलांटा में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने मिस्र को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। इसके बाद राउंड ऑफ 16 के एक और मुकाबले में वैंकूवर में स्विट्जरलैंड का सामना कोलंबिया से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Aparajita Nair. Prime Minister Narendra Modi called for a stronger India-Indonesia strategic partnership, saying it will contribute not only to the prosperity of the two nations, but also to the regional and global peace and stability. Addressing the Indonesian Parliament in Jakarta, Mr. Modi said, India follows the path of development, not expansionism.
2: Bharat vistarvad nahi, vikasvad ki niti par chalta hai, aur isliye hum Bharat mein kehte hain, sabka saath, sabka vikas. Aaj main yahi mantra, yahi bhavana lekar, Indonesia ke aap sabhi sansad sadasyon ke beech aaya. भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
1: Mr. Modi also stressed on expanding cooperation in digital public infrastructure, including UPI, artificial intelligence, education, startups and innovation to benefit people in both countries. Earlier, Prime Minister Modi held delegation-level talks with Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta. The two leaders also witnessed the exchange of memoranda of understanding aimed at enhancing collaboration in areas of mutual interest. Mr. Modi was conferred Indonesia's highest civilian honour, the Bintang Adipurna of the Republic of Indonesia, by President Prabowo Subianto during a ceremonial event. Union Education Minister Dharmendra Pradhan has said that a new chapter has been added to India's education sector with the approval for the Indian Institute of Management, Bangalore, to establish

दोस्तों आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं अंजू आपके साथ और कार्यक्रम लेकर आई हूं निशिगंधा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।

अब जिंदगी में कोई आए या जाए कोई परवाह नहीं, अब जिंदगी में कोई आए या जाए कोई परवाह नहीं, बस एक तेरा साथ मेरे जीने के लिए काफ़ी है।

हम वफा की हर हद पार कर देंगे तुम्हारी चाहत में, हम वफा की हर हद पार कर देंगे तुम्हारी चाहत में, तुम मांग कर तो देखो हम खुद को भी हार देंगे तुम्हारी चाहत में।

प्यार उसे करो जो तुमसे प्यार करे, प्यार उसे करो जो तुमसे प्यार करे, खुद से भी ज्यादा तुम पे एतबार करे। तुम बस एक बार कहो कि रुको दो पल, तुम बस एक बार कहो कि रुको दो पल, और वो उन दो पलों को तुम्हारा इंतजार करे।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है।
1: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूं। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
0: जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास शांति स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एकतरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। विदेश राज्य मंत्री डॉ. कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा है कि भारत ऐसे एआई भविष्य के लिए प्रतिबद्ध है जो सुरक्षित भरोसेमंद और समावेशी हो। उन्होंने जिनेवा में एआई गवर्नेंस पर यूएन ग्लोबल डायलॉग की हाई लेवल पैनल को संबोधित किया। श्री सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि एआई गवर्नेंस मानव केंद्रित समावेशी और भरोसे पर आधारित होनी चाहिए। भारत और रवांडा ने सैनिक ट्रेनिंग, संयुक्त सैनिक एक्सरसाइज, मेडिकल सहयोग और रक्षा उद्योग के क्षेत्रों में अपने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को बढ़ाने पर सहमति जताई है। ये निर्णय नई दिल्ली में दो दिनों तक चली दूसरी संयुक्त रक्षा कोऑपरेशन कमेटी की बैठक के दौरान लिया गया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें स्थिर रहती हैं या घटती हैं तो देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सकारात्मक बदलाव की उम्मीद है। मंत्री ने भरोसा जताया कि उपभोक्ताओं के लिए स्थिति अच्छी बनी रहेगी क्योंकि दुनिया भर में तेल और गैस की सप्लाई बढ़ रही है। नई दिल्ली में विकसित भारत कॉन्क्लेव 2026 को संबोधित करते हुए श्री पुरी ने ये बात कही। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय विमुक्तु घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजातियों के लिए शिक्षा स्वास्थ्य उद्यमता और आजीविका के अवसर बढ़ाने के लिए एक योजना शुरू कर रहा है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि वर्ष 2025-26 के दौरान इस योजना के विभिन्न घटकों के तहत 110,000 से अधिक लाभार्थियों को सहायता दी गई है। इसमें शिक्षा आजीविका और स्वास्थ्य से जुड़ी पहलों को शामिल किया गया है। वायनाड के मेपर्डी में कल्लाड़ी के पास सुरंग निर्माण स्थल पर तेज बारिश के बाद हुए भूस्खलन में 3 लोगों की मौत हो गई है। जमीन के नीचे फंसे 9 मजदूरों को बचा लिया गया है। 6 अन्य अभी भी लापता हैं और उनके मलबे के नीचे दबे होने की आशंका है। अग्निशमन और आपदा राहत दल बचाव अभियान में लगे हुए हैं। नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज में आज रात खेले जा रहे तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में इंग्लैंड ने भारत को 125 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने 20 ओवरों में 7 विकेट पर 201 रन बनाए। इसके जवाब में भारत की टीम लक्ष्य का पीछा करते हुए 76 रन पर सिमट गई। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भारी बारिश का अनुमान जताया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। Prime Minister Narendra Modi called for a stronger India-Indonesia strategic partnership, saying it will contribute not only to the prosperity of the two nations, but also to the regional and global peace and stability. Addressing the Indonesian Parliament in Jakarta, Mr. Modi said, India follows the path of development and not expansionism.
1: Bharat vistarvad nahi, vikasvad ki niti par chalta hai, aur isliye hum Bharat mein kehte hain, sabka saath, sabka vikas. Aaj main yahi mantra, yahi bhavana lekar इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूं। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
2: The Prime Minister said the relationship between India and Indonesia is centuries old and shares similar democratic values, mutual trust and a common vision for the future. Mr. Modi also stressed on expanding cooperation in digital public infrastructure, including UPI, artificial intelligence, education, startups, and innovation to benefit people in both the countries. Earlier, Prime Minister Modi held delegation-level talks with Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta. The two leaders also witnessed the exchange of memoranda of understanding aimed at enhancing collaboration in areas of mutual interest. Mr. Modi was conferred Indonesia's highest civilian honor, the Bintang Adipurna of the Republic of Indonesia, by President Prabowo Subianto during a ceremonial event. Union Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari said that ethanol blending program is a scientifically proven initiative that has delivered significant economic and environmental benefits. Addressing the Viksit Bharat Conclave in New Delhi yesterday, Mr. Gadkari defended the center's ethanol blending program, asking critics to show even one vehicle with issues due to the mixed fuel. He asserted that no such incident has taken place. Petroleum and Natural Gas Minister Hardeep Singh Puri has said that domestic petrol and diesel prices are expected to move in a positive direction if international crude oil prices remain stable or decline. Addressing the Viksit Bharat Conclave 2026 in New Delhi, the minister expressed confidence that the outlook for consumers remains favorable as global oil and gas supplies continue to expand. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar stated that the India-Bahrain cooperation continues to deepen. Dr. Jaishankar concluded his two-day visit to Bahrain last evening. During the visit, Dr. Jaishankar had an audience with Bahrain's King Hamad bin Isa Al Khalifa in the presence of Crown Prince and Prime Minister Prince Salman bin Hamad Al Khalifa. During these meetings, the External Affairs Minister conveyed the greetings of President Draupadi Murmu, Prime Minister Narendra Modi, and reaffirmed India's commitment to further deepening the long-standing and friendly bilateral partnership with Bahrain. The Enforcement Directorate, ED, conducted searches at 5 premises in and around Kolkata in connection with alleged dishonest financial dealings, unlawful collection of money and routing of suspected funds through certain bank accounts of the All India Trinamool Congress, AITC. The searches are being carried out at premises linked to the private firm Carewell Group of Companies operating in the aviation sector, its directors and one purported electoral trust. In Keralam, 3 people were killed in a landslide at the tunnel construction site near Kalladi in Meppadi, Wayanad, following heavy rainfall yesterday. 9 workers who were trapped underground were rescued and shifted to the Government Medical College Hospital, Meppadi. 6 others remain missing and are feared trapped beneath the debris. Rescue operations are continuing with teams from the fire and rescue services and disaster response agencies. And the India Meteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall conditions over Delhi, Haryana, Chandigarh, Punjab, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Bihar, Uttar Pradesh, Kerala, Mahe and Jammu and Kashmir and Ladakh for the next 3 to 4 days. And that is the end of this news bulletin.

दोस्तों, समय हुआ है 1:11 और 3 सेकंड और ये समय है कार्यक्रम गीत सुहाने का। मैं हूँ एक बार फिर से आपके साथ अंजू। स्वागत करती हूँ आप सभी का, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।

धड़कनों से पूछो कि वो क्या गाती हैं, धड़कन से पूछो कि वो क्या गाती हैं, इस दिल पर तो बस हर पल वो तुम्हारा नाम लिख जाती हैं।

सादगी तुम्हारी देखकर तो कुदरत भी दीवानी है, सादगी तुम्हारी देखकर तो कुदरत भी दीवानी है, तुम्हें देख कलियों का मुस्कुराना तो बस एक छोटी सी निशानी है।

अब और ना आजमाओ मेरे सब्र को तुम, अब और ना आजमाओ मेरे सब्र को तुम, चले आओ कि अभी तन्हाई डराने लगी है।

दुआ है कि वक्त तुम्हारे सामने थोड़ा ठहर कर गुजरे, दुआ है कि वक्त तुम्हारे सामने थोड़ा ठहर कर गुजरे और ज़िंदगी का हर लम्हा तुम्हें एक नई मुस्कुराहट दे जाए।

मेरी दीवानगी की कोई हद न पूछो साहेब, मेरी दीवानगी की कोई हद न पूछो साहेब, मैं तो हवाओं से भी तुम्हारा पता पूछकर मुस्कुरा देता हूँ।

दोस्तों अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार और 2:10 पर फिर से आपसे मुलाकात होगी। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है।
1: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूं। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
0: जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास शांति स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एकतरफा कार्रवाईयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। विदेश राज्य मंत्री डॉ कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि भारत ऐसे एआई भविष्य के लिए प्रतिबद्ध है जो सुरक्षित भरोसेमंद और समावेशी हो। उन्होंने जिनेवा में एआई गवर्नेंस पर यूएन ग्लोबल डायलॉग की हाई लेवल प्लेनरी को संबोधित किया। डॉ सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि एआई गवर्नेंस मानव केंद्रित समावेशी और भरोसे पर आधारित होनी चाहिए। भारत और कोस्टारिका ने आपसी व्यापार और निवेश संबंधों की समीक्षा करने और आर्थिक सहयोग के नए रास्ते तलाशने के लिए संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति की पहली मीटिंग वर्चुअल माध्यम के जरिए की। बैठक की सह अध्यक्षता वाणिज्य विभाग के संयुक्त सचिव विमल आनंद और कोस्टारिका की फॉरेन ट्रेड की जनरल डायरेक्टर एड्रियाना कास्ट्रो ने की। बैठक के दौरान व्यापार और निवेश नियमों पर विचार साझा किए गए तथा आर्थिक जुड़ाव को और बढ़ाने के मौकों पर चर्चा की गई। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें स्थिर रहती हैं या घटती हैं तो देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सकारात्मक बदलाव की उम्मीद है। मंत्री ने भरोसा जताया कि उपभोक्ताओं के लिए स्थिति अच्छी बनी रहेगी क्योंकि दुनिया भर में तेल और गैस की सप्लाई बढ़ रही है। नई दिल्ली में विकसित भारत कॉन्क्लेव 2026 को संबोधित करते हुए श्री पुरी ने ये बात कही। वायनाड के मेपर्डी में कल्लाड़ी के पास सुरंग निर्माण स्थल पर तेज बारिश के बाद हुए भूस्खलन में 3 लोगों की मौत हो गई है। जमीन के नीचे फंसे 9 मजदूरों को बचा लिया गया है। 6 अन्य अभी भी लापता हैं और उनके मलबे के नीचे दबे होने की आशंका है। अग्निशमन और आपदा राहत दल बचाव अभियान में लगे हुए हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों में दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ पंजाब हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड बिहार उत्तर प्रदेश केरल माहे और जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख में भारी बारिश का अनुमान लगाया है। अगले 2 दिनों में उत्तरी कर्नाटक के अंदरूनी इलाकों सौराष्ट्र कच्छ विदर्भ राजस्थान और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी ऐसे ही हालात रहने की उम्मीद है। नॉटिंगम के टेंट ब्रिज में खेले जा रहे तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में इंग्लैंड ने भारत को 125 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने 20 ओवरों में 7 विकेट पर 201 रन बनाए जिसके जवाब में भारत की टीम लक्ष्य का पीछा करते हुए 76 रन पर सिमट गई। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Harpreet Kaur. Prime Minister Narendra Modi called for a stronger India-Indonesia strategic partnership, saying it will contribute not only to the prosperity of the two nations, but also to the regional and global peace and stability. Addressing the Indonesian Parliament in Jakarta, Mr. Modi said, India follows the path of development and not expansionism.
1: Bharat vistarvad nahi, vikasvad ki niti par chalta hai, aur isliye hum Bharat mein kehte hain, sabka saath, sabka vikas. Aaj main yahi mantra, yahi bhavana lekar, Indonesia ke aap sabhi sansad sadasyon ke beech aaya. भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है.
2: The Prime Minister said the relationship between India and Indonesia is centuries old and shares similar democratic values, mutual trust and a common vision for the future. Mr. Modi also stressed on expanding cooperation in digital public infrastructure, including UPI, artificial intelligence, education, startups and innovation to benefit people in both the countries. Earlier, Prime Minister Modi held delegation-level talks with Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta. The two leaders also witnessed the exchange of memoranda of understanding aimed at enhancing collaboration in areas of mutual interest. Mr. Modi was conferred Indonesia's highest civilian honor, the Bintang Adipurna of the Republic of Indonesia, by President Prabowo Subianto during a ceremonial event. Union Education Minister Dharmendra Pradhan has said that a new chapter has been added to India's education sector with the approval for the Indian Institute of Management IIM Bangalore to establish an overseas campus in Indonesia. The proposal was approved by Prime Minister Narendra Modi during his visit to Indonesia. He added that the establishment of an overseas campus of such a prestigious institution marks a significant step towards globalizing India's knowledge traditions and education system. Union Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari said that ethanol blending program is a scientifically proven initiative that has delivered significant economic and environmental benefits. Addressing the Viksit Bharat Conclave in New Delhi yesterday, Mr. Gadkari defended the center's ethanol blending program, asking critics to show even one vehicle with issue due to the mixed fuel. He asserted that no such incident has taken place. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar stated that the India-Bahrain cooperation continues to deepen. Dr. Jaishankar concluded his two-day visit to Bahrain last evening. During the visit, Dr. Jaishankar had an audience with Bahrain's King Hamad bin Isa Al Khalifa in the presence of Crown Prince and Prime Minister Prince Salman bin Hamad Al Khalifa. During these meetings, the External Affairs Minister conveyed the greetings of President Draupadi Murmu, Prime Minister Narendra Modi, and reaffirmed India's commitment to further deepening the long-standing and friendly bilateral partnership with Bahrain. Union Home Minister Amit Shah launched the mission to plant 70 lakh saplings in Delhi under the Ek Ped Ma Ke Naam Abhiyan to increase the green cover in the national capital. Speaking on the occasion, Mr. Shah said that the central government and the Delhi government has resolved to fully develop 6,300 hectares of green rich area into forest land over the next 4 years and ensure its protection. Delhi Chief Minister Rekha Gupta said over 12 lakh saplings will be distributed free of cost and appealed the citizens to actively participate in the campaign. The India Meteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall conditions over Delhi, Haryana, Chandigarh, Punjab, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Bihar, Uttar Pradesh, Kerala, Mahe and Jammu and Kashmir and Ladakh for the next 3 to 4 days. Similar conditions are expected to prevail over North Interior Karnataka, Saurashtra, Kutch, Vidarbha, Rajasthan and parts of Northeastern region during the next 2 days. And in men's cricket, England defeated India by 125 runs in the third T20 international at Trent Bridge in Nottingham tonight. And that is the end of this news bulletin.

दोस्तों, आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज आपने ट्यून किया है और अब सफ़र है रात सुरमई का। मैं अंजू एक बार फिर से आप सभी का करती हूँ बहुत बहुत स्वागत, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और शुरुआत कुछ इन अल्फाज के साथ। न जाने कैसी ये साजिश है इन बरसात की बूंदों की, न जाने कैसी ये साजिश है इन बरसात की बूंदों की, कि मेरा हर ख्याल मोड़ दिया तुम्हारी ही गलियों की तरफ।

एक छाता हो, भीगी सी सड़क हो और हाथ में तेरा हाथ हो। एक छाता हो, भीगी सी सड़क हो और हाथ में तेरा हाथ हो। फिर चाहे ज़माना ठहर जाए, बस हमारी ये मुलाकात हो।

इन मदहोश हवाओं ने आज सारी हदें तोड़ दी हैं, इन मदहोश हवाओं ने आज सारी हदें तोड़ दी हैं, चुपके से आकर मुझसे ही तुम्हारा पता पूछ रही हैं।

दोस्तों, हमारे जिन दोस्तों ने अभी अभी ट्यून इन किया है उन्हें हम बता दें, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल। मैं हूँ आपके साथ अंजू और कार्यक्रम है रात सुरमई।

तुमको जिस कदर छाए हो मेरे इन ख्यालों पर, तुमको जिस कदर छाए हो मेरे इन ख्यालों पर, कि अब खुद से बात करूं तो यकीन मानो तुम्हारा ही जिक्र आता है।

तुम्हारी ये अदाएं भी जैसे कोई पुरानी नज्म है, तुम्हारी ये अदाएं भी जैसे कोई पुरानी नज्म है, जितनी बार भी सुनूं हर बार एक नया मुकाम देती हैं।

दूसरे कार्यक्रम का आखिरी गीत है। अब वक्त आ गया है चलने का और 3:10 से हमराही कर सफर लेकर आएंगे आपके साथ अर्जित पांडे। मैं आपसे मिलूंगी जल्दी किसी न किसी मोड़ पर। अपना और अपने अपनों का खास ख्याल रखिएगा। नमस्कार, शुभ रात्रि। और भी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है।
1: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए

0: हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूं। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
1: जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एकतरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान विंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु को इंडोनेशिया में एक विदेशी परिसर स्थापित करने की अनुमति मिलने से भारत के शिक्षा क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ गया है। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा के दौरान मंजूरी दी। पाकिस्तान में दो वर्ष पहले सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा आपातकाल घोषित किए जाने के बावजूद 2 करोड़ से अधिक स्कूली बच्चे अभी तक शिक्षा व्यवस्था से वंचित हैं। इससे पाकिस्तान नाइजीरिया के बाद विश्व में स्कूली बच्चों को शिक्षा से वंचित करने वाला दूसरा सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें स्थिर रहती हैं या घटती हैं तो देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सकारात्मक बदलाव की उम्मीद है। नई दिल्ली में विकसित भारत कॉन्क्लेव 2026 को संबोधित करते हुए श्री पुरी ने ये बात कही। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कल हरियाणा के विभिन्न जिलों में ईंट भट्टों में कथित बंधुआ मजदूरी से जुड़े 86 मामलों की ऑनलाइन सुनवाई करेगा। आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यम ने इस वर्चुअल सुनवाई की अध्यक्षता करेंगे। आयोग ने कहा है कि संबंधित अधिकारी अब तक की कार्रवाई की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करेंगे। इसमें बंधुआ मजदूरों की पहचान, उन्हें मुक्त कराए जाने और असंगठित श्रमिकों के लिए बनाए गए ई श्रम पोर्टल पर उनके पंजीकरण की स्थिति शामिल होगी। वायनाड के मेपर्डे में कल्लाडी के पास सुरंग निर्माण स्थल पर तेज बारिश के बाद हुए भूस्खलन में 3 लोगों की मौत हो गई है। जमीन के नीचे फंसे 9 मजदूरों को बचा लिया गया है। 6 अन्य अभी भी लापता हैं और उनके मलबे के नीचे दबे होने की आशंका है। अग्निशमन और आपदा राहत दल बचाव अभियान में लगे हुए हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, केरल, माहे और जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भारी बारिश का अनुमान लगाया है। अगले 2 दिनों में उत्तरी कर्नाटक के अंदरूनी इलाकों और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी ऐसे ही हालात रहने की उम्मीद है। नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज में खेले जा रहे तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में इंग्लैंड ने भारत को 125 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने 20 ओवरों में 7 विकेट पर 201 रन बनाए, जिसके जवाब में भारत की टीम लक्ष्य का पीछा करते हुए 76 रन पर सिमट गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। Prime Minister Narendra Modi called for a stronger India-Indonesia strategic partnership, saying it will contribute not only to the prosperity of the two nations, but also to the regional and global peace and stability. Addressing the Indonesian Parliament in Jakarta, Mr. Modi said, India follows the path of development and not expansionism.
0: Bharat vistarvad nahi, vikasvad ki niti par chalta hai, aur isliye हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूं। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
2: Mr. Modi also stressed on expanding cooperation in digital public infrastructure, including UPI, artificial intelligence, education, startups, and innovation to benefit people in both the countries. Earlier, Prime Minister Modi held delegation-level talks with Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta. The two leaders also witnessed the exchange of memoranda of understanding aimed at enhancing collaboration in areas of mutual interest. Mr. Modi was conferred Indonesia's highest civilian honor, the Bintang Adipurna of the Republic of Indonesia, by President Prabowo Subianto during a ceremonial event. Union Education Minister Dharmendra Pradhan has said that a new chapter has been added to India's education sector with the approval for the Indian Institute of Management, IIM Bangalore, to establish an overseas campus in Indonesia. The proposal was approved by Prime Minister Narendra Modi during his visit to Indonesia. He added that the establishment of an overseas campus of such a prestigious institution marks a significant step towards globalizing India's knowledge traditions and education system. Union Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari said that ethanol blending program is a scientifically proven initiative that has delivered significant economic and environmental benefits. Addressing the Viksit Bharat Conclave in New Delhi yesterday, Mr. Gadkari defended the center's ethanol blending program, asking critics to show even one vehicle with the issues due to the mixed fuel. He asserted that no such incident has taken place. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar stated that the India-Bahrain cooperation continues to deepen. Dr. Jaishankar concluded his two-day visit to Bahrain last evening. During the visit, Dr. Jaishankar had an audience with Bahrain's King Hamad bin Isa Al Khalifa in the presence of Crown Prince and Prime Minister Prince Salman bin Hamad Al Khalifa. During these meetings, the External Affairs Minister conveyed the greetings of President Draupadi Murmu, Prime Minister Narendra Modi, and reaffirmed India's commitment to further deepening the long-standing and friendly bilateral partnership with Bahrain. Union Home Minister Amit Shah launched the mission to plant 70 lakh saplings in Delhi under the Ek Ped Maa Ke Naam Abhiyan to increase the green cover in the national capital. Speaking on the occasion, Mr. Shah said that the central government and the Delhi government have resolved to fully develop 6,300 hectares of green ridge area into forest land over the next 4 years and ensure its protection. Delhi Chief Minister Rekha Gupta said over 12 lakh saplings will be distributed free of cost and appealed the citizens to actively participate in the campaign. The India Meteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall conditions over Delhi, Haryana, Chandigarh, Punjab, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Bihar, Uttar Pradesh, Kerala, Mahe and Jammu and Kashmir and Ladakh for the next 3 to 4 days. Similar conditions are expected to prevail over north interior Karnataka, Saurashtra, Kutch, Vidarbh, Rajasthan and parts of northeastern region during the next 2 days. And in FIFA World Cup, Argentina defeated Egypt 3-2 in the round of 16 match in Atlanta. Argentina was trailing by 2 goals till 78th minute when the defending champions pulled off a stunning comeback. And that is the end of this news bulletin.

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। 3:10 हो चुके हैं, लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम हमराही। कार्यक्रम हमराही में आप सभी का स्वागत है, जिसमें मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त अर्चित। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम मोहम्मद रफी और आशा जी की आवाज में गाया हुआ एक बहुत ही प्यारा सा गीत।

रोका कई बार मैंने। कोशिश करिए कि कोई बिना बात के नाराज ना हो, कोशिश करिए कि कोई बिना बात के नाराज ना हो, रिश्ते सभी से आपके हमेशा शानदार ही हों। हो जाए कोई नाराज़ तो उसे ज़रूर मनाइए, हो जाए कोई नाराज़ तो उसे ज़रूर मनाइए, पर कभी आप हो नाराज़ तो उसे भी इस बात का एहसास ज़रूर हो। 3:17 हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमराही।

0: मैंने एक ख्वाब सा देखा है।
1: जरा मैं भी सुनू।
0: सुन के शर्मा तो न जाऊंगी
1: तुमसे नहीं,

कोई हो या ना हो मेरे पास, कोई हो या ना हो मेरे पास, पर ये रात तो है मेरे साथ। दिन में बहुत शोर है, दिन में बहुत शोर है, पर ये रात तो है बहुत ही शांत। हर कोई यहाँ सिर्फ अपनी सुनाना चाहता है, हर कोई यहाँ पर सिर्फ अपनी सुनाना चाहता है, सिर्फ ये रात है जो मुझे सुनती है तसल्ली के साथ। बात जो मैं किसी से नहीं कर पाता, बात जो मैं किसी से नहीं कर पाता, वो बात भी कर लेता हूँ इस रात के साथ, क्योंकि ये रात है सिर्फ़ और सिर्फ मेरे साथ। और आप जुड़े हुए हैं मेरे यानी अर्चित के साथ। 3:24 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम हमराही।

3:30 हो चुके हैं। आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। कार्यक्रम हमराही में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है।

एक बहुत ही प्यारा सा गीत अभी अभी आपने सुना, फिर मिलोगे कभी, इस बात का वादा कर लो। इस कदर हम थे तन्हा कि तन्हाइयों ने खुद ही मुझसे दोस्ती कर ली। इस कदर हम थे तन्हा कि तन्हाइयों ने खुद ही मुझसे दोस्ती कर ली। घूम रहे हैं अब तन्हाइयों के साथ दिन और रात हम, घूम रहे हैं अब तन्हाइयों के साथ दिन और रात हम, और लोग समझ रहे हैं हम आज भी तन्हा हैं। 3:36 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम हमराही।

किसी भी चीज़ की कीमत तब तक ही होती है जब तक वो हमें हासिल नहीं होती है। हासिल हो जाए फिर कहाँ उसकी कोई कीमत होती है। हासिल है जो उसे संभाल कर रखिए, हासिल है जो उसे संभाल कर रखिए। जो आपको मिला है उसकी कीमत किसी के लिए आज भी बहुत होती है। 3:43 हो चुके हैं, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। सुनते रहिए कार्यक्रम हमराही मेरे यानी अर्चित के साथ।

मिजाज हमारे तुम यूं ना समझ पाओगे, मिजाज हमारे तुम यूं ना समझ पाओगे, एक दो बार मिलकर तुम मेरे लिए क्या ही राय बनाओगे। समझना है हमें तो आओ कभी फुर्सत से बैठें, समझना है हमें तो आओ कभी फुर्सत से बैठें, एक बार जो समझ गए तो फिर कभी ना भूल पाओगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं, विकास मार्ग पर चलता है।
1: भारत विस्तारवाद नहीं, विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र, यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
0: जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एकतरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु को इंडोनेशिया में एक विदेशी परिसर स्थापित करने की अनुमति मिलने से भारत के शिक्षा क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ गया है। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा के दौरान मंजूरी दी। जर्मनी के ब्रेमेन में बलूच नेशनल मूवमेंट ने बलूचिस्तान में मानवाधिकारों की स्थिति को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने पाकिस्तान के अधिकारियों पर बलूच लोगों के खिलाफ अत्याचार करने का आरोप लगाया। बलूच नेशनल मूवमेंट ने पड़ोसी देशों, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और मानवाधिकार संगठनों से बलूचिस्तान की बिगड़ती स्थिति पर ध्यान देने और वहां के लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए कदम उठाने की अपील की। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने लद्दाख में सीमा सड़क संगठन की विभिन्न परियोजनाओं में निधि के दुरुपयोग से संबंधित चार आपराधिक मामलों में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने बताया कि उसने बीआरओ, लद्दाख के एक सहायक अभियंता और करगिल से दो श्रम आपूर्ति एजेंटों को गिरफ्तार किया है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने झारखंड से 2 मीट्रिक टन आम्रपाली आम का व्यावसायिक निर्यात दुबई के लिए कराया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि ये आम झारखंड के गुमला और देवघर जिलों की महिलाओं द्वारा संचालित 3 किसान उत्पादक कंपनियों से खरीदे गए हैं। इन कंपनियों का विकास बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत किया गया है। मंत्रालय ने कहा कि ये निर्यात जनजातीय समुदायों और महिला किसानों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज में तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में इंग्लैंड ने भारत को 125 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 201 रन बनाए। इसके जवाब में भारत की टीम लक्ष्य का पीछा करते हुए 76 रन पर सिमट गई। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, केरल, माहे और जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख में भारी बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2 दिनों में उत्तरी कर्नाटक के अंदरूनी इलाकों, सौराष्ट्र, कच्छ, विदर्भ, राजस्थान और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी ऐसे ही हालात रहने की उम्मीद है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ। 4:10 हो चुके हैं, लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम अरुणिमा। सिर्फ हैसियत देखकर बात ना कीजिए, सिर्फ हैसियत देखकर बात ना कीजिए, थोड़ा इंसान के अंदर भी झांक लीजिए। बाहर से तो सारे मकान ही सुंदर दिखते हैं, बाहर से तो सारे मकान ही सुंदर दिखते हैं, बुनियाद कितनी मजबूत है पहले वो पता कीजिए। दिल से अच्छा हो इंसान वही जरूरी है, दिल से अच्छा हो इंसान वही जरूरी है, सिर्फ सुंदर चेहरों पर जल्दी विश्वास ना कीजिए। जुड़िए किसी से तो फिर दिल से जुड़िए, जुड़िए किसी से तो फिर दिल से जुड़िए, सिर्फ दिखावे के लिए अब दोस्ती न करिए।

लता मंगेशकर जी की आवाज में तुम ही मेरे मंदिर। ताउम्र भटकते रहे मंजिलों की तलाश में, ताउम्र भटकते रहे मंजिलों की तलाश में, मिली जब मंजिल तो पता चला असली सफर तो अब शुरू हुआ है, अभी तक तो सिर्फ भटक ही रहे थे। 4:18 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम अरुणिमा मेरे यानी अर्चित के साथ।

0: कोशिशें तो आखिरी तक कीजिए सफल होने की, कोशिशें तो आखिरी तक कीजिए सफल होने की, सफलता मिली तो ठीक वरना तजुर्बा तो मिल ही जाएगा। चार बजकर 24 मिनट हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अरुणिमा मेरे यानी अलचित के साथ।
1: ये चीज खास मैंने उस अनजान देवी के नाम लिखी है जो शायद कहीं किसी जिंदगी के मोड़ पर मेरा इंतजार कर रही है, या यूं समझिए कि मैं उसका इंतजार कर रहा हूं।

सुबह पे जिस तरह शाम का हो गुमा, सुबह पे जिस तरह शाम का हो गुमा, जुल्फों में एक चेहरा कुछ जाहिर।

किशोर कुमार जी की आवाज में ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत। जीवन में कोई भी चीज पूरी तरह से बेकार नहीं होती है, बेकार से बेकार चीज भी कभी न कभी किसी न किसी के काम आ ही जाती है। घड़ी चाहे बंद ही क्यों ना पड़ी हो, घड़ी चाहे बंद ही क्यों ना पड़ी हो, सारा दिन में एक बार सही समय जरूर बताती है। सुनते रहिए कार्यक्रम अरुणिमा।

उतार चढ़ाव तो जिंदगी में लगा ही रहता है, उतार चढ़ाव तो जिंदगी में लगा ही रहता है, बस आपको है इसे ठीक से समझना। जब चढ़ रहे हो सफलता के शिखर पर तो कभी घमंड ना करना, और जब उतर रहे हो तो थोड़ा संभल कर चलना।

4:47 हो चुके हैं, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। सुनते रहिए कार्यक्रम अरुणिमा।

रास्ते कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, विश्वास अपने पैरों पर रखो। रास्ते कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, विश्वास अपने पैरों पर रखो। जाना खुद ही पड़ेगा आपको चलकर, ये रास्ते आपको कहीं नहीं पहुंचाते। 4:52 हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अरुणिमा।

4:56 हो चुके हैं। अभी तक आप सुन रहे थे कार्यक्रम अरुणिमा। लीजिए सुनिए इस प्रोग्राम का आखिरी गीत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है।
1: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूं। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
0: जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एक तरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपुर

0: ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM बेंगलुरु को इंडोनेशिया में एक विदेशी परिसर स्थापित करने की अनुमति मिलने से भारत के शिक्षा क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ गया है। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा के दौरान मंजूरी दी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और बहरीन के बीच सहयोग लगातार गहरा हो रहा है। डॉक्टर जयशंकर ने बहरीन की यात्रा के दौरान क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री प्रिंस सलमान बिन हमद अल खलीफा की मौजूदगी में बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की। विदेश मंत्री ने बहरीन के साथ द्विपक्षीय साझेदारी को और गहरा करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के संभावित प्रभाव और तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की। ये बैठक प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा की अध्यक्षता में सेवा तीर्थ में हुई। बैठक में 15 से अधिक मंत्रालयों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। डॉक्टर मिश्रा ने निर्देश दिया कि स्थिति की निरंतर निगरानी की जानी चाहिए और संवेदनशील जिलों पर मॉनसून या विलंबित मॉनसून के प्रभाव का आकलन राज्यों के समन्वय से किया जाना चाहिए, जिससे आवश्यकता पड़ने पर सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके। संवेदनशील जिलों में पीने के पानी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें स्थिर रहती हैं या घटती हैं तो देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सकारात्मक बदलाव की उम्मीद है। नई दिल्ली में विकसित भारत कॉन्क्लेव 2026 को संबोधित करते हुए श्री पुरी ने कहा कि भारत ने कूटनीतिक बातचीत, समय पर नीतिगत कदम, घरेलू उत्पादन बढ़ाने और अलग अलग स्रोतों से तेल आयात करने जैसे उपायों से ऊर्जा क्षेत्र में आई सबसे बड़ी वैश्विक चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 के मुकाबले में स्विट्जरलैंड ने कोलंबिया को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। वैंकूवर में खेले गए मैच में दोनों टीमें निर्धारित समय में कोई गोल नहीं कर सकी। इसके बाद स्विट्जरलैंड ने पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। Prime Minister Narendra Modi called for a stronger India-Indonesia strategic partnership, saying it will contribute not only to the prosperity of the two nations, but also to the regional and global peace and stability. Addressing the Indonesian Parliament in Jakarta, Mr. Modi said, India follows the path of development and not expansionism.
2: Bharat vistarvad nahi, vikasvad ki niti par chalta hai. और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूं। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
1: Mr. Modi also stressed on expanding cooperation in digital public infrastructure, including UPI, artificial intelligence, education, startups and innovation to benefit people in both the countries. Earlier, Prime Minister Modi held delegation-level talks with Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta. The two leaders also witnessed the exchange of Memoranda of Understanding aimed at enhancing collaboration in areas of mutual interest. Mr. Modi was conferred Indonesia's highest civilian honor, the Bintang Adipurna of the Republic of Indonesia by President Prabowo Subianto during a ceremonial event. Petroleum and Natural Gas Minister Hardeep Singh Puri has said that domestic petrol and diesel prices are expected to move in a positive direction if international crude oil prices remain stable or decline. The minister expressed confidence that the outlook for consumers remains favorable as global oil and gas supplies continue to expand. Addressing the Viksit Bharat Conclave 2026 in New Delhi, Mr. Puri said, India successfully weathered one of the most challenging global energy disruptions in recent decades through a combination of diplomatic engagement, timely policy interventions, enhanced domestic production, and diversified imports. He said the country's experience demonstrated the importance of long-term energy reforms in ensuring energy security. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has stated that the India-Bahrain cooperation continues to deepen. Dr. Jaishankar concluded his two-day visit to Bahrain yesterday. During the visit, Dr. Jaishankar had an audience with Bahrain's King Hamad bin Isa Al Khalifa in the presence of Crown Prince and Prime Minister Prince Salman bin Hamad Al Khalifa. He also had a separate call on Deputy Prime Minister Sheikh Khalid bin Abdullah Al Khalifa. During these meetings, the External Affairs Minister conveyed the greetings of President Draupadi Murmu, Prime Minister Narendra Modi, and reaffirmed India's commitment to further deepening the long-standing and friendly bilateral partnership with Bahrain. He thanked the leadership of Bahrain for ensuring the safety, security, and well-being of the Indian community in the kingdom. The Prime Minister's Office, PMO, held a high-level review meeting to review possible impact of El Nino on various sectors and preparedness measures. The meeting was held under the chairmanship of Principal Secretary to Prime Minister Dr. P.K. Mishra at the Seva Teerth yesterday. Secretaries and senior officials of more than 15 ministries were present at the meeting. Mr. Mishra directed that the overall situation should be continuously monitored and the impact of the monsoon or delayed monsoon on vulnerable districts must be assessed in coordination with states so that remedial action can be taken up when necessary. Union Home Minister Amit Shah launched the mission to plant 70 lakh saplings in Delhi under the Ek Ped Ma Ke Naam Abhiyan to increase the green cover in the national capital. Speaking on the occasion, Mr. Shah said that the central government and the Delhi government have resolved to fully develop 6,300 hectares of green rich area into forest land over the next 4 years and ensure its protection. And in FIFA World Cup, Argentina defeated Egypt 3-2 in the round of 16 match in Atlanta. And that is the end of this news bulletin.

ये आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल है। 5:10 हो चुके हैं, लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम भोर सुहानी। हटेगी धुंध जब सवेरा खिल कर आएगा, कोहरा चाहे कितना भी गहरा हो, धूप के आने पर छट ही जाएगा। निराशा के दरिया में गोते मत लगाइए, निराशा के दरिया में गोते मत लगाइए, धीरे धीरे तैरते हुए किनारा भी मिल जाएगा। 5:11 हो चुके हैं, कार्यक्रम भोर सुहानी में आप सभी का स्वागत है, जिसमें मैं हूं एक बार फिर से आपका दोस्त अर्चित। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ।